0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार आपकी जिंदगी में कभी वो बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ आप बड़े हो रहे थे एंड यू सेड कि अगर 33 तक हमारी शादी नहीं हुई तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, या फिर अगर मेरा बॉयफ्रेंड हुआ एंड थिंग्स डोंट वर्क आउट विद हिम मैं तेरे साथ मूव इन कर लूंगी, लिव इन करके देखते हैं हाउ दैट गोज, या फिर अगर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा तो जब मेरे बच्चे होंगे और तेरे बच्चे होंगे हम उन दोनों की ना बचपन में ही शादी फिक्स करा देंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है देन यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम मी, बिकॉज मेरा एक बेस्टी है बचपन से लेकर अब तक, उसका नाम शाम है, शाम के साथ मैंने ऐसी हर एक प्लानिंग करके रखी है, इस दौरान शाम की शादी हो गई, शाम का डिवोर्स हो गया, इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज मुझे पता है कि अगर जिंदगी के एंड में मैं ऐसे ही सिंगल मरने वाली हूँ और मेरे 5 दिन बचे हैं मरने से पहले, तब भी शाम मुझसे शादी करेगा, एंड इट्स ऑलवेज सच अ गुड आइडिया टू हैव अ प्लान बी, मेरे केस में मैं उसे कहती हूँ प्लान एस, प्लान शाम। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही बेस्टी है जिसके साथ आपने जीने मरने के प्लान्स बनाए हैं, इन केस योर रोमांस फेल्स फॉर यू देन सेंड मी योर स्टोरी ऑन इंस्टा या FB, लेट्स कंपेयर नोट्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने एक्स बॉयफ्रेंड के फर्स्ट कजन के साथ चक्कर चलाते हुए आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, और अगर लग भी रहा है एंड यू वांट सम रोशिफिकेशन, नाउ इज द टाइम टू डिस्कस योर वेरी स्ट्रेंज अफेयर्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अर्थात आपके पास अगर है कोई कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर नॉटी बॉय.
3: हेलो रिया.
1: हंस रहे हो आप नॉटी बॉय? ये जो आपने झूठ बोले ना, ये झूठ बोल बोल कर मुझे नहीं पता कि दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी रिडेम्पशन, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के मुझे तो बड़े मजे आए. तो जरा एक बार फिर से समझाना कि आपकी जिंदगी में आपने कांड क्या करे.
3: ओके, सो आई एम अ हार्ड नॉन वेजिटेरियन.
1: हार्ड नॉन वेजिटेरियन क्या होता है यार?
3: लाइक आई ईट इट एवरी डे.
1: हाँ,
3: देयर इज नॉट अ सिंगल डे आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड.
1: हाँ,
3: but what happened ki I had this girlfriend from last 3 months.
1: Huh.
3: And actually 3 months se pehle tha wo, I can't discuss that.
1: Huh.
3: So basically
1: 3 months se pehle tha, but ab discuss nahi kar sakte. Aisa kya kaand kar rahe the aap?
3: Let's not talk about that.
1: Okay, acha theek hai. Phir to 3 mahine aapke sath hi girlfriend thi phir.
3: So प्रॉब्लम ये हुई कि उसके घर वाले थे प्योर वेजिटेरियन. सो फ्यू डेज बैक, लाइक नॉट फ्यू डेज, सम वीक्स बैक, हमारा रोका हुआ. और प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर वाले जो वेजिटेरियन है, उनके घर में वेजिटेरियन ही बनता है. और मैं हूँ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, तो आई कांट सर्वाइव द डे विदाउट नो वेजिटेरियन फूड. तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बस एक चीज मांगी थी कि यू हैव टू Be a vegetarian.
1: अच्छा, ठीक है.
3: तो मैंने तो हाँ में हाँ करी दी थी उस टाइम विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. बट मैं उसके घर गया एक दो बार मिलने. उसके मम्मी पापा से मिला. आई टोल्ड देम कि मैं बहुत वेजिटेरियन हूँ. मैं शुरू से वेजिटेरियन खा रहा हूँ. मैंने आज तक चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाया.
1: कितना झूठा है यार तू.
3: तो वहां तक तो फिर भी ठीक था. लाइक मैं उसके साथ कहीं जाता था, फूड ऑर्डर करते थे हम, या तो साउथ इंडियन खाते थे या तो कोई वेजिटेरियन थाली मंगाते थे. लेकिन उसके जाने के बाद ही या मैं या अपने दोस्तों को लेकर नॉन वेज खाने चले जाता था ऑन द सेम रेस्टोरेंट. सो दैट्स व्हाट बीन हियर. बट नॉट जस्ट दैट, एक महीने पहले मेरा रोका था तो उसकी फैमिली तो पूरी प्योर वेजिटेरियन है. तो मुझे पता था कि प्योर वेजिटेरियन ही खाना बनेगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाता नॉन वेजिटेरियन के से. तो व्हाट आई डिड कि मैं घर से हाफ केजी मटन बिरयानी खा के गया था.
1: तेरे इन लॉज को ये पता चला ना, या तेरी बीवी होने वाली बीवी को ये पता चला ना, तो तेरा ही मटन बिरयानी बना देगी वो. और आई होप दैट नेवर हैपेंस. रोशिफिकेशन कर दूं आपके लिए, मे बी यू लैंड अ फीलिंग लाइक गिल्टी. तो आप फील कर ही नहीं रहे हो, ऐसे खुश खुश होके बता रहे हो कि यार मैं तो मटन मैं तो चिकन. बट ले लो आप ये रोशिफिकेशन, क्योंकि आपने मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनाई है.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: You are so cute. रियल रियल तो तब होगा आपकी जिंदगी में जब आपकी बीवी को पता चलेगा कि आप इतने महीनों से उसे क्या झूठ बोलते हो आ रहे हो. बार इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट फेस. मुझे अपनी शादी के लिए बुलाना मत भूलना, ठीक है? आई नो आई एम गोइंग टू लाइक लुक फॉरवर्ड टू द शादी का कार्ड एंड द लड्डू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू बेबी, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Inefficient.
5: Very complex.
6: Clumsy hoy.
7: Confusion hi confusion.
8: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
15: एक ही होता है
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
16: It's 8:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
17: Udaari pe jo haath phere, saari duniya hille.

पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
3: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
4: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
5: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी।
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Hello, baby. Hello, honey. Hello, darling. Call me baby. Call me honey. Call me darling. रोज रोज रोज रोज इंस्टाग्राम पर यही मैसेज पढ़ते पढ़ते अब मैं ऊब गई हूँ. इसलिए मैंने डिसाइड किया फाइनली आदित्य को फोन कर ही देते हैं. दिस इज द पर्सन हुज बीन सेंडिंग मी दीज मैसेजेस. आप भी इससे बेहतर क्वालिटी के मैसेज मुझे भेज सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड राइट नाउ लेट्स कॉल आदित्य. हाय, इज दैट आदित्य?
2: या आदित्य,
1: हाउ आर यू?
2: I'm fine. How are you?
1: I'm very good. आपने मुझे करोड़ों बार call me baby, call me baby, call me baby, call me honey लिख के भेजा है. अब मैंने call कर दिया आपको.
2: हाँ, आप इतने time से call नहीं कर रहे थे, इसके लिए मैंने इतनी बार message किया. मेरे को लगा एक दिन तो जरूर करेगी.
1: अच्छा, अब मैंने आपको फोन कर दिया. अब बताओ क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
2: कुछ नहीं, देखो ना, अभी भी कोई girlfriend नहीं मिल रही, मदद करो.
1: अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मैं एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप हूँ चलता फिरता, और मैं आपके लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ के ले आऊंगी. कितने साल के हो आप?
2: मैं 24 साल का हूँ.
1: और कितने साल से सिंगल हो आप?
2: 24 साल से.
1: दुनिया के कौन से कोने में रहते हो आप?
2: मैं मुंबई में रहता हूँ.
1: आपको मुंबई में गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है? मुझे लगा ऐसे कहीं किसी पिछड़ी हुई जगह में रह रहे होगे जहाँ गर्ल टू बॉय रेशियो बहुत खराब होगा, तो बेचारे को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है.
2: ट्राई किया लड़की को इम्प्रेस करने पर, वो इम्प्रेस ही नहीं होती, बोलती आया वो बॉयफ्रेंड. फिर लाइन ही कट जाता है.
1: तो आप ऐसी लड़कियां ढूंढते क्यों हो जिनका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है? ये देखना नहीं होता है पहले? आपको सीरियसली बताओ, आपको रिलेशनशिप के हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता है कि जब हम कोई लड़की ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि ये इंसान ऑलरेडी किसी और को डेट तो नहीं कर रहा? आप ऐसा कुछ ऐसा करने में बिलीव नहीं करते हो?
2: नहीं. क्योंकि मेरे को खुद को पता नहीं रहता चलता कि लड़की के पास बॉयफ्रेंड है कि नहीं.
1: भाई तू बहुत वियर्ड है. काम क्या करते हो आप?
2: मैं खुद के कंपनी में काम करता हूँ.
1: तो एक सेकंड, आपके कोई दोस्त नहीं है जिनकी बहनें हैं या जिनके गर्लफ्रेंड की सिंगल फ्रेंड्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में?
2: नहीं.
1: अच्छा ठीक है, द गुड थिंग इज कि आप मुंबई में, और आप मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक प्रेशराइज कर रहे हो टू गिव यू अल्टरनेटिव्स. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे ना क्लब्स होते हैं, जैसे साइकिलिंग क्लब्स होते हैं, फोटोग्राफी क्लब्स होते हैं, स्कल्पचर क्लब्स होते हैं. आपको इनमें से एक ज्वाइन करना पड़ेगा सो दैट यू कैन मीट लाइक माइंडेड पीपल, जिनमें से एक शायद कोट अनकोट सिंगल लड़की आपको मिल जाए.
2: आई होप सो.
1: आपकी कोई हॉबीज हैं वैसे?
2: हाँ, मतलब मैं अभी स्केचिंग करता हूँ. आई लाइक स्केच पोर्ट्रेट्स ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज लाइक जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस.
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग. सो आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज, बिकॉज आपको ऑलरेडी आर्ट पसंद है, यू विल गेट अलोंग रियली वेल विद विमेन जिनका थोड़ा आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड है. तो आप ये भी कर सकते हो कि देयर इज अ प्लेस इन जुहू जिसे कहते हैं द स्पेस. वहां पर क्या होता है, वो आपको एरियल योगा सिखाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. या फिर आप पॉटरी लैब ज्वाइन कर सकते हो, बांद्रा में है. वहां पर आप ऐसे बड़े से मिट्टी के टेराकोटा के पॉट्स बना सकते हो. देयर आर एंडलेस थिंग्स यू कैन डू यार.
2: बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है.
1: तो और कुछ नहीं तो कम से कम तू पॉटरी से बड़े बड़े वाजेस बनाना सीख लेगा और फिर मेरे घर के लिए बना के मुझे भेज देगा, है ना?
2: डन डन आपके लिए. मैं तो एक्चुअली लास्ट टाइम सोच रहा था कि अगर आपके साथ मतलब डेट कर सकता हूँ या मतलब गो फॉर आउटिंग विद यू.
1: यार अनफॉर्चुनेटली करंटली आई एम इन अ रिलेशनशिप विद जस्ट माय प्लांट्स. मैंने नया नया गार्डनिंग शुरू किया है और अभी तो मैं बस अपने प्लांट्स को डेट करना चाहती हूँ. मैं थैंक यू फॉर आस्किंग मी आउट. तो एटलीस्ट तेरी बाकी की लड़कियों की तरह मैं सिंगल तो हूँ, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स दैट यू हैव आस्क्ड आउट. ये तो नहीं कह रही हूँ कि आई एम सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है. पर आप कृपया मेरा इंतजार ना करें, ये पॉटरी क्लासेस ज्वाइन करके बताएं कि क्या हुआ. ठीक है?
2: I'll keep you posted.
1: Keep me posted. All the best to you. ठीक है? All the
2: best.
1: Thank
2: you so much.
1: Take care, darling. Love you.
2: Bye.
1: और अगर ऐसे ही आदित्य की तरह आपकी भी जिंदगी में सीरियसली लाइक आप बॉदर ही नहीं कर रहे हो चेक करना कि सामने वाला इंसान किसी रिलेशनशिप में है या नहीं, यू आर जस्ट गोइंग फॉर इट एंड फॉलिंग फ्लैट ऑन योर फेस, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम, फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वाटरमेलन किसे पसंद नहीं है, और इस मौसम में तो आपको एक ऑप्शन मिले, आप तो वाटरमेलन जूस जरूर पियोगे, बिकॉज आई एम द सेम काइंड ऑफ पर्सन. बट इफ यू आर समवन जिसे वाटरमेलन नहीं पसंद, देयर इज न्यूज फॉर यू जो शायद आपका मूड बदल दे अबाउट वाटरमेलन. नए रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि अमंगस्ट द लिस्ट ऑफ एफ्रोडीसियाक्स, यानी कि जो खाने आपके अंदर रोमांस और पैशन पैदा करते हैं, उनमें से द लेटेस्ट थिंग दैट जॉइंस द क्लब इज वाटरमेलन. तो वाटरमेलन एक ऐसा खाना है जो आपके अंदर एक्साइटमेंट भी, रोमांस भी और पैशन भी पैदा कर सकता है. इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट, आई थिंक अगर आप अपने पार्टनर को इंस्टेड ऑफ द यूजुअल कॉफी, विच इंसिडेंटली इज ऑल्सो एन एफ्रोडीसियाक, अगर एक वाटरमेलन जूस ऑर्डर करके दो ना, तो उसका ये फायदा हो सकता है कि क्योंकि द वाटरमेलन जूस इज ऑल्सो वेरी कूलिंग फॉर द बॉडी, आपकी डेट अगर एंग्शियस है या उसे गर्मी लग रही है एंड कॉन्सिक्वेंटली वो इरिटेबल है, वो सब बदल जाएगा विद जस्ट दिस वन वाटरमेलन जूस. एंड धीरे धीरे एज इट गेट्स इनटू हर सिस्टम, शी माइट ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग वेरी रोमांटिक अबाउट यू. ये टिप मैंने अपने सबसे छोटे भाई को दी, हु इज नाउ ओल्ड इनफ टू गो डेटिंग, एंड इट टोटली वर्क्ड फॉर हिम, बिकॉज जब वो वापस आया, ही वॉज लाइक, तुझे पता है रोशी दीदी, I actually had my first kiss today. And I think it had a lot to do with the watermelon juice. So, agar aapne apni date ke saath ye try nahin kiya hai, I think this summer you totally should try that. And once it works for you, mujhe thank you bolna mat bhoolna. And to do that, you can find me Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Kaam hai aapse pyaar karna. Naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. So, hit me up, baby. Do whatever you have to do. Lekin, kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या आप जानते हो दैट इट इज पॉसिबल कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ दोस्त हो सकते हैं विदाउट गेटिंग नॉटी विद ईच अदर. इट इज ट्रू. इट्स कॉल्ड मैरिज. और अगर आपकी मैरिज भी उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर लड़ाई ज्यादा और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कम, देन मे बी आपको अपने घर की अपहोल्स्ट्री में ब्लू एंड ग्रीन कलर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज कलर थेरेपी के हिसाब से दैट इज वॉट ब्रिंग्स हार्मनी इन टू अ हाउस. लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में हार्मनी तो है लेकिन नॉटीनेस की कमी है एंड यू वांट अ होल लिस्ट ऑफ एफ्रोडिसियाक्स, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फर्स्ट कजिन के साथ चक्कर चलाते हुए आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, और अगर लग भी रहा है एंड यू वांट सम रोशिफिकेशन, नाउ इज द टाइम टू डिस्कस योर वेरी स्ट्रेंज अफेयर्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अर्थात आपके पास अगर है कोई कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर नॉटी बॉय.
3: हेलो.
1: मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर नॉटी बॉय.
3: हेलो.

0: I have this girlfriend from last 3 months.
1: Huh.
0: And actually, 3 months se pehle tha wo, I can't discuss that.
1: Huh.
0: So basically...
1: 3 months se pehle tha, but ab discuss nahi kar sakte. Aisa kya count kar rahe the aap?
0: Let's not talk about that.
1: Okay, achha, theek hai, phir. To 3 mahine aapke saath hi girlfriend thi, phir?
0: So, problem ye hui ki uske ghar wale the, pure huh. vegetarian.
1: Huh.
0: So, some weeks back, हमारा रोका हुआ और प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर वाले जो वेजिटेरियन है उनके घर में वेजिटेरियन ही बनता है और मैं हूँ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन तो आई कांट सर्वाइव द डे विदाउट नो वेजिटेरियन फूड. तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बस एक चीज मांगी थी कि यू हैव टू बी वेजिटेरियन
1: बी अ वेजिटेरियन. अच्छा ठीक है.
0: तो मैंने तो हाँ मैं हाँ करी दी थी उस टाइम विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. बट मैं उसके घर गया एक दो बार मिलने उसके मम्मी पापा से मिला. आई टोल्ड देम कि मैं बहुत वेजिटेरियन हूँ. मैं शुरू से वेजिटेरियन खा रहा हूँ. मैंने आज तक चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाया.
1: कितना झूठा है यार तू.
0: तो वहां तक तो फिर भी ठीक था. लाइक मैं उसके साथ कहीं जाता था. फूड ऑर्डर करते थे हम या तो साउथ इंडियन खाते थे या तो कोई वेजिटेरियन थाली मंगाते थे. लेकिन उसके जाने के बाद ही या मैं या अपने दोस्तों को लेकर नॉन वेज खाने चले जाता था ऑन द सेम रेस्टोरेंट. सो दैट्स व्हाट इट इज़ हियर. बट नॉट जस्ट दैट, एक महीने पहले मेरा रोका था तो उसकी फैमिली तो पूरी प्योर वेजिटेरियन है. तो मुझे पता था कि प्योर वेजिटेरियन ही खाना बनेगा. एंड आई टोल्ड यू कि मैं एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाता नॉन वेजिटेरियन के से. तो व्हाट आई डिड कि मैं घर से हाफ के जी मटन बिरयानी खा के गया था.
1: तेरे इन लॉज को ये पता चला ना या तेरी बीवी होने वाली बीवी को ये पता चला ना तो तेरा ही मटन बिरयानी बना देगी वो. और आई होप दैट नेवर हैपेंस. रोशिफिकेशन कर दूं आपके लिए. मे बी यू एंड अप फीलिंग लाइक गिल्टी. तो आप फील कर ही नहीं रहे हो, ऐसे खुश खुश होके बता रहे हो कि यार मैं तो चिकन. बट ले लो आप ये रोशिफिकेशन क्योंकि आपने मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट सुनाई है.
2: You've been roshified.
1: You are so cute. रियल तो तब होगा आपकी जिंदगी में जब आपकी बीवी को पता चलेगा कि आप इतने महीनों से उसे क्या झूठ बोलते हो आ रहे हो. बार इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट फेस्ट. मुझे अपनी शादी के लिए बुलाना मत भूलना ठीक है. आई नो आई एम गोइंग टू लाइक लुक फॉरवर्ड टू द शादी का कार्ड एंड द लड्डू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी कन्फेशन है फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू बेबी. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: टूथब्रश भी तो लोनली होता होगा ना, तो पेयर इट अप एक टूथब्रश के साथ एक और टूथब्रश डाल दो, सारा दिन सारी रात अकेला टूथब्रश। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेंगशुई के हिसाब से अगर आप अपने कमरे और बाथरूम में चीजों को डबल कर देते हो तो इट क्रिएट्स पार्टनर एनर्जी। मैंने अपने सिंगल भाई को यही बात बताई तो वो अपने लिए चार टूथब्रश, चार साबुन, चार पिलोज, चार कुशन्स ले आया। शायद वो चार पार्टनर्स चाहता है या फिर उसकी मैथ बहुत खराब है, पर व्हाटएवर द सिचुएशन इज, द मोर द मैरियर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया दैट विल अट्रैक्ट अ पार्टनर इनटू योर लाइफ एंड यू आर टू लेजी टू डाउनलोड अ डेटिंग ऐप, शायद ये फेंगशुई टिप माइट बी द थिंग दैट हेल्प्स यू। इसे ट्राई करके देखो एंड आई हैव अ फीलिंग आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा ये। एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलना मत भूलना इंस्टा पर या एफबी पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से अबाउट लव, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप. अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है. शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी. हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव. गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है. साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
4: How chup

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKanika. Follow karna bilkul free hai. @RJKanika par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जम करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana. Kya bana? Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: हेलो।
3: हाँ बोलो कौन?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल, कौन रहा है?
4: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो?
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
3: कब आया था, कब घुसा अंदर?
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: तो कहाँ से आया? तो नहीं हो गया है?
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: सीवर में मरा रहा है तू?
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने?
4: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। एक काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो?
4: कुकड़ुकू।
5: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं। विराट।

में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of super hit songs, pichle hafte se teen position niche drop hoke, unka gana Dealer this week on Gaana number 6. Usse pehle ek nayi naveli entry hui Jasleen Royal ka gana Inaam, jisne debut kiya on Gaana number 7.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Hello, swagat hai aapka. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And aaj ka gaana spotlight is... गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है, जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग हैज शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: डूड, दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो फीलिंग्स बया करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनेका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनेका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गाना इंडी टॉप 10
6: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
7: नंबर 4।

0: आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
0: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

द ओजी माय कुमार सानू कॉल्ड तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्काई और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज

The OG pop star song, गाने का नाम है मोहब्बत लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत, एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बत लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं, दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से, जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बत लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बत लुटाऊंगा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वॉज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आर द लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो. अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा. नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Instagram par jao, connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi gaana share karna ho, bindaas aake hit me up. Aksar log gaane sun ke gaanon ka naam bhul jaate hain aur mujhe itne sare messages aate hain ki Kanika wo gaana number 5 kaun sa tha, jo gaana number 9 par bajaya wo kaun sa gaana tha. So before we move on to the top 2 songs of the week, a quick recap karte hain right from the top. Gaana number 10 par tha Harsh Nussi ka Saadi Sun. Uske baad Anish Sarkar Hruday ka Udi Udi was on Gaana number 9. Gaana number 8 par this week Anoop Jain ka Arz Kiya Hai.
2: Kaayare jo the, wo shayare bane.
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7. फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6. जिदा तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना. संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5. कोक स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3. निरोग And the top 2 songs of the week. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है. सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर

0: वसंत कुमार पादुकोण या बाद में जिनका नाम हुआ गुरुदत्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्मों को न सिर्फ इनोवेशन दिया बल्कि एक डायरेक्शन भी दी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट थी, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क। जिसका इतना टैलेंटेड बेटा 40 साल भी न जी पाया हो, क्या बीती होगी उस माँ पर। गुरुदत्त जी की मदर वसंती पादुकोण ने एक इंटरव्यू में, सुनिए गुरुदत्त जी के जन्म और बचपन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: जब मेरी शादी हुई तो एक ऐसा रीजन ने कहा कि तुम्हें एक साल के अंदर एक लड़का होगा जो बहुत मशहूर होगा। 1925 जुलाई 9 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत नटखटा था और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका एक स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं पागल हो जाता। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो ही वो मानता था। अब गुस्से वाला बहुत था, इम्पल्सिव था वो। मन में आया तो करेगा ही जरूर।
0: मन की करके तो वो जीत गए लेकिन अपने दिमाग से हार गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों और मिर्ची मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ आप आगे ले लेंगे इसको? नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ आप आगे ले लेंगे इसको?

0: के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे DDA का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना, 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो,
0: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
0: अरे यार
1: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
0: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम DDA की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ DDA से, सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज कराए अपना DDA ने।
0: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना
0: भैया,
1: पैसे
0: भाड़ मगा। आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा। मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
4: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
4: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना, मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे, तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
4: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
4: पापा ने कहा था?
2: चुप कर, पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
4: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
4: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर,
4: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा था तूने?
4: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
4: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल भी आखो यार, एक मारूंगा।
4: ने बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
4: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
4: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
4: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
4: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा। लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Guru Dutt, a special Charu ke saath. Purani jeans par, only on Mirchi.

0: गुरुदत्त साहब की फिल्मों की यूएसपी क्या होती थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली आप कोई एक चीज नहीं पिन पॉइंट कर सकते क्योंकि उनकी फिल्मों की सारी चीजें इतनी ब्रिलियंट होती थी। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी ने क्या शेयर किया था कि गानों को लेकर वो किन चीजों का खास ख्याल रखते थे।
1: उनके साथ काम करने का तरीका यही था कि वो गीत लिखते वक्त दो तीन बातें देखते थे। एक तो ये, जिस वोकैबुलरी में डायलॉग बोलता है कैरेक्टर अपने, जिन मैनर्स में वो कहने के स्टाइल उसका है, वो मैनर्स वो वोकैबुलरी हमारे गीतों में आई कि नहीं आई। एडिशनल हैसियत से उसे देखते थे कि ये गीत जो है सीन को आगे बढ़ाए। इसी वजह से गीत में दो बातें वो देखते थे, एक तो ये कि डल नहीं, ओपनिंग म्यूजिक लंबा नहीं हो, तो वो कभी कभी तो ऐसा करते थे डायलॉग से कट के और सीधे गीत शुरू कर दो। उनके साथ काम करने में हमको इसलिए परेशानी नहीं होती थी कि दुश्वारी वहाँ होती है जहाँ आदमी कुछ वेग होता है, क्लियर कट नहीं होता, तो ही वाज डिसाइसिव अबाउट हिम।
0: वैसे गुरुदत्त साहब की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, वो चाहे उन्होंने प्रोड्यूस की हो, डायरेक्ट की हो, गाने एक से एक बढ़कर होते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: ताज़ा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
2: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
3: विजिट viranijewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: गुरुदत्त साहब अपने फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को लेकर कितने पैशनेट थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म के डिस्कशंस में किस कदर खो जाते थे, सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने क्या शेयर किया था।
1: वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका और कहा क्या करते हो यार, मूर्ति बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉर्ट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूंछ काट दी, उड़ा दी। तो हम से किसी से रहा नहीं गया नेचुरली, तो सब हंस पड़े जोर जोर से, क्योंकि तुम लोग हंस रहे हो, आज रात को शूटिंग है, मैं क्या करूं। तो फिर मूर्ति साहब ने कहा गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे, आप इस तरह कीजिए, दूसरी तरफ की भी मूंछ शेव कर डालिए, फिर दूसरी नकली मूंछ लगानी पड़ेगी आपको। तो वो जब शॉट के बारे में, खासकर जब वो सोच रहे हो या बातें कर रहे हो, वो सब कुछ भूल जाते हैं।
0: क्या ही डेडिकेशन और पैशन था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: आपको पता है फिल्म मेकर गुरुदत्त की सिस्टर ललिता लाजमी एक जानी मानी पेंटर थी, मतलब भाई बहन दोनों ही सुपर टैलेंटेड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लाजमी जी ने क्या शेयर किया था कि कैसे गुरुदत्त साहब को शायद फिल्मों का शौक चढ़ा।
1: माय अंकल मिस्टर बेनी यूज्ड टू बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन ऑल ऑफ अस। ही यूज्ड टू गेट पासेस, फ्री पासेस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू सी 2 and 3 फिल्म्स इन अ डे। एंड आई एम श्योर गुरुदत्त मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट इवन एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ मेनी फिल्म्स। आई फील दैट working in films does change a personality, especially the kind of films that he made. Probably the long hours of working or the greater part of it, he became more and more aloof, and slowly all those picnics and those lot of fun that we had singing and all that slowly stopped. As a personality, he had a lot of disturbances. He couldn't cope up with them, probably because in those days it was not very easy to confide in another person.
0: कितना मुश्किल हो गया होगा उनके लिए अपनी mental health से deal करना, उसी के साथ साथ इतना creative होना। Hats off। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: गुरु दत्त साहब पता नहीं कितने सारे फिल्म मेकर्स के गुरु रहे हैं, मेंटर रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम पे उनके असिस्टेंट रहे राज खोसला साहब, जो बाद में चल के बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे। उन्होंने सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया कि गुरु दत्त साहब से उन्होंने क्या क्या सीखा।
1: आई एम नोन फॉर माई सॉन्ग प्रिजर्वेशन, दैट आई पिक्चराइज सॉन्ग्स वेरी वेल। एक्चुअली इट्स गुरु दत्त स्किल दैट आई लर्नड। ही टोल्ड मी दैट 80% of the acting is done with the eyes of the actor. He would often get lost from all the people he loved, and then he would feel lonely. But he was a person who was lonely, but he was never alone. He was with his film. You see, it's one thing to love somebody, it's another thing to say I love you. He was not a man who could say I love you. He used to love, but could not express himself. That was the enigma. So the whole thing came out in the films. You couldn't read through him, but I read one thing about him. That he really was lost. Lost in filmmaking, but lost to life.
0: जिंदगी से हार गए लेकिन फिल्मों को तो अपनी जिंदगी दे दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Rápala! ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga! ¡Mirchi, burga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló?
2: हेलो हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
8: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: कई बार बहुत बुरा लगता है सोच के कि इतना टैलेंटेड, इतना बड़ा फिल्म मेकर मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था और कोई उस टाइम पे शायद उसे समझ नहीं पाया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुरुदत्त साहब की मैं बात कर रही हूँ। अपने लाइफ के आखिरी सालों में गुरुदत्त साहब का मन जैसे सब चीजों से उखड़ गया था। जो नई फिल्मों के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए उसमें भी उनका खास दिल नहीं लग रहा था। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या शेयर किया था।
1: क्या हुआ, वेरी ऑफन यूज्ड टू टेक पिल्स एंड ये वो, उन दौरान डॉक्टर्स ने पहचाना नहीं, समझा नहीं, ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो ही स्टार्टेड सेइंग दिस वेरी ऑफन, आई एम नॉट हैप्पी, I'm not for everything he started saying. So us waqt nobody realized ki what was going on in his mind. And later on, much unke bhai the Atmaram, unhone kaha Vahida na humne pehchana na doctors ne pehchana, he was going through depression.
0: Depressive state mein bhi wo banda kya kamal iconic cult classic film mein bana gaya. Hats off. Purani jeans par main hoon Charu aapke saath. हम इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हैं। मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
4: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: गुरुदत्त साहब की क्रिएटिव टीम के एक बहुत ही स्पेशल मेंबर थे अबरार अलवी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने गुरुदत्त साहब की बहुत सारी इम्पोर्टेंट फिल्म्स जैसे कि कागज के फूल, प्यासा, आर पार, इनके डायलॉग्स लिखे थे, स्क्रीन प्ले भी लिखे थे कुछ फिल्मों के। एक पुराने इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या शेयर किया था जब वो पहली बार 1953 में गुरुदत्त साहब से बाज़ फिल्म के सेट्स पर मिले थे।
1: बेकारी का जमाना था तो जसवंत साहब के साथ कभी कभार बाज़ के सेट्स पे चला जाता था, तो वहाँ मेरी मुलाकात गुरुदत्त जी से हुई। दोनों को काम से प्यार था, उन्हें भी हमें भी, और एक नशा सा आता था कुछ नई बातें सोच के, कुछ ये करके। ट्यूनिंग हो गई थी बहुत अच्छी उनके साथ, मिजाज मिल गए थे, टेम्परामेंट मिलते थे। गुरुदत्त बहुत इंट्रोवर्ट, लेफ्ट द वर्ल्ड वो भी था थोड़ा सा, इंट्रोवर्ट नहीं होते तो जिंदा रहे अपना। जहाँ तक उसके प्रिंसिपल्स का सवाल था और थॉट का, फिलोसफी का सवाल था, वो डिफिटिस्ट एटीट्यूड से मैं एग्री नहीं करता। फाइट द सिस्टम, कहाँ छोड़ के जाओगे? जहाँ भी जाओगे तुम्हें यही लोग मिलेंगे, यही समाज मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेंगे, यही सिस्टम मिलेगा, कहाँ जा रहे हो?
0: सोशल सिस्टम से, छोटी छोटी अनजस्ट चीजों से जो इंसान इतना अफेक्ट हो जाता हो, कितना ही सेंसिटिव और इमोशनल होगा। इन्हीं इमोशंस से शायद वो अथाह क्रिएटिविटी आती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Gurudat, a special Charu ke saath. Purani jeans par Only on Mirchi.

0: गुरुदत्त जी की पर्सनल लाइफ के बारे में सोचो तो बहुत दुख होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनकी वाइफ गीता दत्त जी की लाइफ के बारे में सोचो तो और ज्यादा दुख होता है। गुरुदत्त जी अक्टूबर 1964 में नहीं रहे और उनके जाने के बाद जैसे गीता दत्त जी की लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहा। कुछ सालों बाद वो भी नहीं रही। गुरुदत्त जी की डेथ के कुछ टाइम बाद उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम होस्ट किया था। उसमें किस तरह अपने इमोशंस उन्होंने एक्सप्रेस किए थे उसका एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं।
1: और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। मेरे पति देव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। इस कार्यक्रम का गीत भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है।
0: Well, आप समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है, साहेब बीबी और गुलाम का न जाओ सैया, जो गीता दत्त जी ने ही गाया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन

0: हमारे देश के बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने गानों का पिक्चराइजेशन गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गानों से सीखा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए जॉनी वॉकर जी ने एक बहुत ही पॉपुलर गाने से जुड़ा क्या इंसिडेंट शेयर किया था।
1: हम लोग सब गुरुदत्त जी वगैरह कलकत्ता गए थे, क्योंकि मैं कलकत्ता के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। जनाब पकड़ के मुझे लेके चले गए, तो वो जनाब एक पुचके वाले की दुकान पे हम दोनों बैठ गए और पहले तो पुचके खाए। इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो उधर से एक मालिश वाला निकला और मालिश वाले ने उस आदमी की मालिश करना शुरू कर दी और जनाब वो बड़ी स्टाइल में हाथ वाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने मुझे देखा, बोला जॉनी स्टाइल इसकी पकड़ो लेकिन आवाज तुम अपनी रखो, वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना। मैंने कहा कौन सी? अरे भाई जब तुम वो खटमल की दवा वाली, तो मैं समझ गया हाँ, तो बोले बस वो आवाज मेरे को चाहिए।
0: जी प्यासा का ये आइकॉनिक सॉन्ग पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची

0: Milci. Scabana, Puscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga,
1: la Virtua, la Burga, Milci, Burga.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम ही देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
3: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
3: हो गया, आप रो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए,
3: फोन आ रहा
2: है। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: में, आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर, उंगलियों मिर्ची।

0: बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो गुरुदत्त साहब ने प्रोड्यूस की लेकिन डायरेक्ट नहीं की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए बिकॉज वो नए टैलेंट को चांस देने में बिलीव करते थे और इसीलिए अपने बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि वो दूसरे डायरेक्टर्स को फिल्म डायरेक्ट करने का मौका देते थे, एक और वजह थी जो एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने शेयर की थी। सुनिए।
1: जब उन्होंने चौधरी का जान शुरू की थी तो उन्होंने उस फिल्म की डायरेक्शन सादिक साहब को दी थी, क्योंकि उन दिनों सादिक साहब की हालत, माली हालत बहुत खराब थी। यहाँ तक के बाद में पता चला कि उनका वो उससे पहले भी उनका काफी घर का खर्चा वगैरह ये किया करते थे और बहुत लोगों ने कहा कि आपने सादिक साहब को क्यों दिया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप पिछले दिनों उनकी कोई फिल्में नहीं चली, उनकी कोई मार्केट नहीं है। तो वो कहते थे गलत बात है, एक जो इंसान अच्छा है सो अच्छा है। जब वो सब्जेक्ट सोचते थे, ढूंढते थे, उनमें काफी वैरायटी हुआ करती थी, यानी कि सब पिक्चरें एक ही तरह की हो रही है।
0: तो मतलब इस बंदे की सिर्फ क्रिएटिविटी ही वास्ट नहीं थी, इसका दिल भी बहुत बड़ा था, बस अपने दिमाग अपनी जिंदगी से हार गए। हैट्स ऑफ टू गुरुदत्त साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
6: गुरुदत्त स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: गुरु दत्त साहब, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क। सुनिए एक बार पोएट एंड लिरिसिस्ट कैफी आजमी साहब ने, जिन्होंने गुरुदत्त साहब की काफी फिल्मों में गाने लिखे हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या शेयर किया था।
1: गुरुदत्त बहुत बड़े टेक्नीशियन थे, बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे, और वो कैमरे के थ्रू कुछ जो बातें बड़ी आसानी से लोगों को समझा देते थे, वो इस तरह एक्सप्रेस करने में बहुत कमजोर थे। वो खुद क्या चाहते हैं ये बात उनको बताने में बहुत मुश्किल पेश आती, तो उनके साथ काम करने का मतलब ये था कि आप उनको समझ लें तभी आप काम कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने तो सिर्फ गाने लिखे उनके, उससे पहले कुछ दिन साथ रहा था तो बहुत करीब हो गए थे एक दूसरे के, तो मैंने उस पर एक नज्म कही, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई।
0: रियल लाइफ में अपनी बात कह देते थे, रियल लाइफ में नहीं कह पाते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: तक स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गुरुदत्त स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: तो क्या
1: द एनिग्मा द मिस्ट्री कॉल्ड गुरुदत्त. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ. और उनकी डेथ सुसाइड था या एक्सीडेंट, इस बारे में आज भी डिस्कशन होता है. उनकी फैमिली के हिसाब से इट वॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी बहुत सारे काम, बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी. एक रात पहले वो अपने स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर अबरार अलवी साहब के साथ बैठकर अपनी नेक्स्ट फिल्म बहारे फिर भी आएंगी डिस्कस कर रहे थे. इसके बारे में अलवी साहब ने सुनी एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था.
2: लास्ट सीन इसका बहारे फिर भी का आएंगे तो उसका डिस्कस कर रहे थे. वो लिख रहा था मैं. ड्रिंक उन्होंने 5 बजे शुरू कर दी थी. बहुत ज्यादा मॉर्बिड थिंकिंग थी, क्या बताऊं. लेकिन वो डिस्कस करते थे, वो बहक जाते थे थोड़ा थोड़ा. कुछ इधर की बातें करते थे, कुछ पागलपन की बातें करते थे. फिर हल्के से जबान से निकल गया. अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं. मैं कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों पागल होंगे. तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. 1 बजे रात तक मैं उनके साथ था, खुले नहीं. एंड इफ आई हैड नोन ही इज गोइंग टू डू दैट मैड थिंग तो मैं उन्हें छोड़ के आता भी नहीं. मैं समझा ठीक था. मैं तो आई वॉज सो इन्वॉल्व इन फिनिशिंग द सीन, लास्ट सीन. उसके पहले रात को खाना खाने के उन्होंने नहीं खाया. उन्हें कहा अबरार इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू रिटायर.
1: दिल से जिंदगी जी, लेकिन अपने दिमाग और जिंदगी से हार गए. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: प्यास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot,

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

से ना हो पाएगा। कौन बोला

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिसट्रस्ट से हॉट होने के बजाय उसे समझना क्यों ज्यादा जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजों को आपको देख के आगे बढ़ना है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि आश्रम में भी एक सिस्टम होता है, आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और उसी से एक एक एक अरेंजमेंट है जिस कारण से कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं। अब अगर आपने किसी को एक काम दिया और वो काम नहीं हुआ तो आपका भरोसा उस पर नहीं टूटता?
4: अगर हम उसके ऊपर भरोसा, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई काम नहीं किया फॉर वट एवर रीजन, आपने वो काम नहीं किया, आप क्या चाहेंगे सामने वाला कैसे आपके साथ बिहेव करे?
3: कैसे बिहेव करे? विनम्रता से और कह दें कि भाई ये हुआ नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अगर मैंने कोई काम नहीं किया मेरे से वो इंसान कैसे बिहेव करे?
4: व्हेन आई ट्रस्ट समबडी, एक वर्क पर भी आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को वर्क दिया और उसने वो काम नहीं किया, आई एम ट्रस्टिंग द पर्सन,
3: राइट,
4: है ना? उसने कोई काम नहीं किया, इमीडिएटली उसके ऊपर से ट्रस्ट नहीं टूट जाएगा,
3: दैट इज नॉट द राइट, अगली बार हो जाएगा,
4: वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं किया ना।
3: अच्छा ठीक है,
4: लेकिन ये होता है, समझो मैंने आपको कोई काम दिया और मैंने आपको बहुत ट्रस्ट किया और अगर वो नहीं होता, आई एम सो अटैच टू द आउटकम, मुझे वो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, उस रिजल्ट पर चाहे मेरी खुशी डिपेंडेंट है, रिकग्निशन डिपेंडेंट है, प्रमोशन डिपेंडेंट है, कुछ भी है, पर वो मेरे लिए इतना जरूरी है कि आई डोंट इवन लुक कि क्या हुआ होगा जो नहीं हुआ, जैसे आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। क्यों? आपने वो नहीं किया तो कौन हर्ट हो गया?
3: मैं,
4: तो मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने आपको ट्रस्ट किया, हर्ट नहीं आना चाहिए। हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है?
3: खुद।
4: हम कैसे क्रिएट कर रहे? उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने मुझे दुख दिया ना। व्हाई डिड यू से कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं?
3: क्योंकि
4: हमारी ऑडियंस तो कभी भी नहीं मानेगी इस चीज को।
3: आपसे बातचीत करते हुए ये समझ में आया कि सब खुद पे ही आता है।
4: है तो सच वो, और ये कोई हम इस शो पर डिस्कस कर रहे ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मेजोरिटी को ये चीज पता ही होती है कि कहीं ना कहीं हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, और वही चीज है जो हमें हमारा हाईएस्ट वर्जन बनाएंगे। अब आपको मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने वो नहीं किया, फर्स्ट चीज है मैंने आपको ट्रस्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैंने चूज किया था ना, कोई मजबूरी तो नहीं थी। आज आप मेरे लिए काम करने आए, हमारे टीम में कोई एक नया मेंबर आया, हमने उस टीम के नए मेंबर को हायर किया या रखा, वाई? बिकॉज हमें लगता है उसके अंदर वो स्किल है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, हमने उसको हायर किया। सेकंड चीज, जब हम उसको ट्रस्ट करते हैं, हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वो करके देगा। थर्ड होता है कि वो कर भी सकता है
3: और नहीं भी कर सकता है।
4: नहीं भी कर सकता है। अब जब वो नहीं करता है, अब क्या होता है?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इंट्रोस्पेक्शन और इंस्पेक्शन दोनों का सही बैलेंस क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इंट्रोस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होता है, भाई क्या
4: हुआ? इंट्रोस्पेक्शन इंस्पेक्शन चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आपने लाइन तब क्या बोली थी कि अगर कोई काम नहीं करता तो मेरा उसके ऊपर से भरोसा ही टूट जाता है। भरोसा टूट जाना,
3: एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपने कहा था कि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक काम दिया, सामने वाले नहीं किया, फिर मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कोई बहाना बनाया या बताया मुझे ऐसा ऐसा मेरे घर पे कोई दिक्कत थी, ठीक है भाई 4 दिन बाद कर देना, 4 दिन बाद मैंने पूछा क्या हुआ भाई, फिर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो सामने वाला कहता है कि नहीं भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं परसों तक कर दे, डेडलाइन है मेरे को, टाइमलाइन है मेरे को, सामने आगे काम देना है, आप मुझे बता दो। 2 दिन बाद मैंने फिर पूछा क्या हुआ, हो गया, नहीं अभी भी नहीं हो, मैंने कहा ठीक है भाई मुझे दे दो, तुमसे नहीं हो पा रहा, कोई भी कारण हो सकता है। कई बार बहुत सारे ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जो कहते हैं तुमसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं मुझे दे दो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे देना है,
4: राइट।
3: तो ऐसे सेटअप में समवेयर ऑन द लाइन इस इंसान को लगता है ये छह बार से मैं इसको बोल रहा हूँ ये कर ही नहीं रहा, भाई आई कैनॉट ट्रस्ट यू फॉर विद दिस वर्क एनी मोर, कोई बात नहीं तुम मुझे दे दो मैं कर लेता हूँ। सो ये भी तो होता ना, इट्स नॉट एज सिंपल कि एक बार तुमने काम नहीं किया मेरा ट्रस्ट टूट गया, इट कुड बी रिपीटेड इंस्टेंसेस आल्सो,
4: या इट इज ओके, दैट इज ओके। सो बट देन इन द प्रोसेस वन इज दैट यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन विद दैट वर्क,
3: राइट,
4: विद दैट वर्क, एंड वन इज मैंने आप पर ट्रस्ट किया था और वो ट्रस्ट आपने मेरा तोड़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई एम वेरी अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड, देयर टू डिफरेंट थिंग्स ना, दोनों में अलग है। हम हमेशा ट्रस्ट टूटने पर क्या हो जाते हैं,
3: हर्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं,
4: नाराज हो जाते हैं, और उसका ब्लेम किसके ऊपर डालते हैं,
3: सामने वाले पे।
4: हाँ। वो चीज रॉन्ग है, काम उसने नहीं किया, आपने उसको प्यार से भी बोला, स्ट्रिक्टली भी बोला, डिसिप्लिन से भी बोला, अब आप वो प्रोजेक्ट उनसे लेके किसी और को भी दे सकते हैं क्योंकि काम तो आपको कराना ही है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको बहुत ट्रस्ट किया था, आपने मेरा भरोसा तोड़ा, आई एम वेरी हर्ट, ये नहीं कह सकते आप।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक्सपेक्टेशन के बिना ट्रस्ट करना पॉसिबल कैसे होता है और क्यों ये रिश्तों को हल्का बनाता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो क्या कह सकते हैं,
4: एक एक्सटर्नल है,
3: एक इंटरनल है,
4: एक इंटरनल है।
3: तो एक्सटर्नल क्या कह सकते हैं?
4: एक्सटर्नल में आप दो, पहले तो दो अलग चीजें हैं, ठीक है, हमने ना दोनों को बहुत मिला के रखा हुआ है। एक चीज इंटरनली हो रही है, एक चीज एक्सटर्नली हो रही है। एक्सटर्नली क्या हो रही है, आपने किसी को ट्रस्ट किया, आपने उनको एक प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने प्यार से कहा उन्होंने नहीं किया, आपने स्ट्रिक्ट होकर कहा उन्होंने नहीं किया, आपने वार्निंग दी उन्होंने नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप आपने वो प्रोजेक्ट कहा सॉरी इट हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन दिस डेट, आपने उनसे लेकर के किसी को दे दिया, परफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक सिस्टम है, वो एक तरीका है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ डिसिप्लिन और रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आपने किसी को ट्रस्ट किया, बहुत ट्रस्ट करके आपने उसको प्रोजेक्ट दिया, आपने दो दिन बाद पूछा, उसने कहा अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा देयर वाज अ लिटिल वेरी लिटिल डिस्टरबेंस बट यू कंट्रोल्ड, और आपने बहुत प्यार से कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको सारी कंपनी से ट्रस्ट करके दिया है, कहा नहीं नहीं हो जाएगा। फिर चार दिन बीत गए, आपने बहुत स्ट्रिक्ट होकर के बोला, उन्होंने तो भी नहीं किया, अब अंदर क्या हो रहा है,
3: खलबली
4: हो रही है। फिर आपने आप उनको ट्रस्ट कह रहे हैं कि मैं ट्रस्ट करके दे रहा हूँ थर्ड टाइम, लेकिन आप अंदर ही अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट करने लगे,
3: जरूरी नहीं नेगेटिव हो, कभी कभी होता है कि भाई समय नहीं है, तुम बर्बाद कर रहे हो, मैंने 6 दिन पहले बोला था, तुम तभी कह देते नहीं हो रहा, मैं तभी तुमसे ले लेता। तो एवरी पर्सन इज नॉट ए नेगेटिव पर्सन,
4: बट वी हैव टू टेक वन सिचुएशन राइट नाउ, है ना, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, अग्रीड, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, पीपल आर गोइंग टू थिंक डिफरेंटली, बट थोड़ी खलबली मचनी शुरू हुई, आपने कहा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना शुरू किया, फिर आपको चांस देना है या नहीं देना है, पर आपने ये जो कहा कि पहले ही बता देते, 6 दिन और हमारे बर्बाद कर दिए, ये आप जो कह रहे हैं, यू शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेन ऑन समबडी एल्स,
3: फिर तो कभी काम होगा ही नहीं सिस्टर।
4: See, you have to understand, we have to find a way to get things done.
3: Right.
4: But what is happening within, that responsibility we have to take.
3: Understood. तो आप बोल रहे हैं कि भाई अंदर आप ना हिलें, आप एकदम स्थिर रहें।
4: माना आप क्या कह रहे हैं कि हम जिनको भी जीवन में कोई काम देंगे और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, तो सब लोग हमें ऐसे मिलेंगे कि हमारे अनुसार वो परफेक्ट वो काम टाइम पर करके देंगे?
3: बिल्कुल नहीं होंगे।
4: तो फिर
3: इसलिए जिंदगी हमेशा 100% आइडियलिस्टिक तरीके से नहीं चलती।
4: माना ये पॉसिबिलिटी है ना कि हमने किसी को ट्रस्ट किया था, सब देख के ट्रस्ट किया था, स्किल टैलेंट सब कुछ देख करके ट्रस्ट किया था, देन ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि वो होगा या नहीं हो सकता, कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है।
3: तो आपके हिसाब से फिर हमको किसी को ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए?
4: हमें सबको ट्रस्ट करना चाहिए।
3: अच्छा, और फिर अगर,
4: लेकिन अगर वो नहीं हो तो हर्ट नहीं होना चाहिए।
3: तो मतलब सामने वाला वो काम करे नहीं करे, चीट करे नहीं करे, मुझे सबको ट्रस्ट करना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है?
4: मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, सामने वाला क्या करेगा वो उसकी नेचर है।
3: बिल्कुल।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: सोशल सेटअप में ट्रस्ट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। बट हम सोशल सेटअप में रहते हैं ना, हम एक दूसरे से मिलजुल के एक दूसरे के कारण एक दूसरे की वजह से आगे बढ़ते हैं।
4: एब्सोल्युटली हम सोशल सेटअप पे रहते हैं, लेकिन हम सब सेम नहीं है ना।
3: हम सेम नहीं है,
4: हम सब, हमारी कैपेसिटी भी सेम नहीं है, हमारे काम करने का तरीका भी सेम नहीं है, हमारे प्रिंसिपल्स वैल्यूज भी सेम नहीं है। सो इवन दो वी लिव इन अ सोशल सेटअप, वी आर वेरी डिफरेंट,
3: राइट,
4: है ना, एंड वी आर वेरी डिफरेंट। एंड इफ आई, पहले तो अगर आपने किसी पर ट्रस्ट किया तो क्यों किया?
3: क्यों किया मतलब कुछ ना कुछ उसने किया होगा मेरा भरोसा जीतने के लिए।
4: फर्स्ट टाइम मैं फ्रेशर आपके पास आया है।
3: कई बार होता है कि जिस रेफरेंस से आया मुझे उस पर बहुत भरोसा है,
4: आप करेंगे ना, हाँ। आप उसको भरोसा करेंगे ना, लेकिन फिर ये कोई श्योरिटी थोड़ी ना है। किसी ने आपको कहा, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हमें कोई कहता नहीं बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया, तो हम ट्रस्ट करके तो जाते हैं ना। हम जाके उसको ये तो नहीं पूछते ना आपकी क्या डिग्री है, आपने कौन से कॉलेज से पास किया, वो किसी की रेफरेंस से हम उसको ट्रस्ट करते हैं, फिर हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर हम ठीक हो जाते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर है, पर एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी के लिए बहुत अच्छा था पर उसका ट्रीटमेंट मेरे पर वर्क नहीं किया। Is that a possibility?
3: Absolutely,
4: or not? Then what will I do?
3: I'll try a second opinion or a second doctor.
4: That's it. But आप कह रहे नहीं सोशल सेटअप है तो वो डॉक्टर परफेक्ट ही होना चाहिए, कैसे हो सकता है?
3: मैं कह रहा हूँ कि फिर मेरा भरोसा उस डॉक्टर से हट जाएगा, मैं दूसरे डॉक्टर पास जाऊँ।
4: हाँ, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर मेरे दर्द का रिस्पॉन्सिबल है, इमोशनल अंदर। उस डॉक्टर ने आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। बाहर क्या होता है ना, जब वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा होता तो अंदर भी तो हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं ना। सर, बाहर ही कुछ थोड़ी ना हो रहा होता है। आज आप किसी डॉक्टर के पास गए किसी के रेफरेंस से, उन्होंने आपको दवाई दी, आप वो दवाई ले रहे हैं, आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं काम हो रहा, तो आप अंदर में क्या सोचते हैं उस डॉक्टर के बारे में?
3: कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कोई बात नहीं यार, इस डॉक्टर के बस की नहीं, मैं किसी और के पास जाता हूं।
4: That's it. That's all that trust is. It's okay. कि मेरे, मैं गया था नहीं, किसी के रेफरेंस से गया था पर नहीं हुआ, लेट मी गो टू अनदर डॉक्टर। अगर ये है दिस इज परफेक्ट, बट इफ यू स्टार्ट यू नो थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट द डॉक्टर, हेटिंग द डॉक्टर, स्प्रेडिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट द डॉक्टर, हम वो सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नेगेटिव रिएक्शंस को समझना और एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी होता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बहुत खूबसूरत बात आप कह रही हैं कि सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। तो एकहार्ट टोल जो है वो जर्मन बॉर्न स्पिरिचुअल लीडर हैं, सेल्फ हेल्प ऑथर भी हैं बहुत बड़े। उन्होंने एक किताबें लिखी थी, पावर ऑफ नाउ, शायद 1997 में किताब आई थी। तो वो कहते हैं कि चाइल्डहुड में उनका जो रिलेशन था अपने पिताजी से, वो बहुत ख़राब रिलेशनशिप था। उनके पिताजी एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी इरप्ट हो सकते थे, और वो कहते हैं कि मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इसकी वजह ये थी कि जब वो यानी उनके पिताजी बड़े हो रहे थे, ही वेंट थ्रू अ वेरी टफ चाइल्डहुड, और उनके पिताजी को वो इमोशंस डेवलप ही नहीं हुए फादरहुड वाले। तो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने लिखी, मैं लिख के लाया हूँ। वो कहते हैं कि आई रियलाइज ही डिड वॉट ही डिड अकॉर्डिंग टू द वे इन विच लाइफ हैड कंडीशनड हिम, एंड दैट इज वाई मैंने उनको सिर्फ फॉरगिव किया और प्यार किया। ये एकहार्ट टोल बोलते हैं, और वो कहते हैं कि यू डू नॉट इक्वेट व्हाट द पर्सन डिड विथ हु द पर्सन इज। वो जो आपके साथ कर रहे हैं और वो जो दरअसल हैं, ये दो अलग चीजें हैं,
4: एक्टर एंड एक्शन।
3: एक्शन, जिस दिन आप मुझे ये समझ में आ गया, उस दिन मैं, मेरे लिए उनके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, कभी मार भी देते थे, लेकिन मेरे पास उनके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। तो जो एक्ट कर रहा है और जो एक्शन उसका है, ये दो अलग चीजें। बहुत खूबसूरत बात है।
4: इसलिए हम कई बार बार बार कहते हैं ना, बी काइंड बिकॉज वी डोंट नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। तो हम जज फटाफट कर लेते हैं, हमने कहा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो बहुत गुस्से वाले हैं। पर जैसे हमने थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करी, तो हमने कहा अच्छा, उनकी भी चाइल्डहुड ऐसी थी, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, या कोई ब्रोकन फैमिली से आया था। तो सडनली आप देखो, जो हमारा एंगर होता है उनके प्रति, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
3: सद्भावना में, कि भाई बेचारा कोई बात नहीं।
4: पर जरूरी ये है कि आपको हर एक की स्टोरी कैसे पता चलेगी,
3: पूछोगे तो पता चलेगी।
4: कई बार उनको भी नहीं पता होती।
3: हाँ, वो उनके एक्शन में निकल के आता है, फिर वो रियलाइज नहीं करते।
4: उनको भी नहीं पता होती है सच में, ये फैक्ट है कि वो ऐसे क्यों हैं, उनको भी नहीं पता होता,
3: उनके कंट्रोल में नहीं होता।
4: कोई पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कोई चैलेंजेस होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि उनका वो जो रिस्पॉन्स है वो इतना कहाँ से निकल कर के आ रहा है। ट्रस्ट करना पड़ता है कई बार।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कॉन्फ्लिक्ट में ओनरशिप लेना क्यों सोल्यूशन की पहली स्टेप होती है, आइए इसे गहराई से जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने एक चीज और कही कि बार बार उसी चीज को अपने दिमाग में मत दोहराओ, क्योंकि वो आपको और पेन में ही डालेगा। और अक्सर इंसान क्या करता है, एक चीज जब होता है तो उसी के बारे में सोचते हैं, बार बार हम खरोचते रहते हैं, वो घाव बन जाता है। ये बड़ा मुश्किल होता है निकालना। तो इसके बारे में एकहार्ट टोल बहुत खूबसूरत सी लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि पीपल चेरिश टॉकिंग अबाउट व्हाट समबडी डिड और फेल टू डू। पीपल, लोगों को बड़ा मजा आता है, वो बार बार इस बारे में बात करते हैं कि किसी ने उनके साथ क्या किया या क्या नहीं किया, विच इज व्हाट मेक्स अस फील मोर एंड मोर अग्रीव्ड। वी डोंट नीड दैट।
4: We don't need, because the more you repeat,
3: the more you go into hurt.
4: And then you don't keep it to yourself, na?
3: फिर दूसरों को भी बताते हैं।
4: जो आपके चिंतन में है वो वर्णन में जाना ही है।
3: अरे वाह, क्या बात है। जो आपके चिंतन में है वो आपके वर्णन में तो जाएगा ही
4: जाएगा। जो आपका थॉट है वो आपकी शेयरिंग में जाए, जो पहला व्यक्ति मिलेगा।
3: पता है
4: क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमें उसका अप्रूवल चाहिए। वो कहे अच्छा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ,
3: मेरी साइड आ जाओ, मेरी टीम में हो तुम।
4: I just feel that वो थोड़ा temporary support होता है ना, वो मुझे ये नहीं बताता है कि how to come out of it. बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कहते हैं अच्छा हो गया ना, बस अब इसको full stop लगाओ, वो ये नहीं कहते हैं।
3: तो अक्सर इंसान बताता इसलिए क्योंकि उसको support चाहिए होता है,
4: उसको approval चाहिए होता है,
3: support भी चाहिए होता है ना, कि कोई उसको ये बोल दे नहीं देखो ये सही तरीका है, ऐसा करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग वो काम करते थे,
4: कभी कभी वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको ऐसा लगता है गलती उनकी है, उनको शिक्षा देने की जगह मुझे दे रहे हो। सो लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस आल्सो ना, वो थोड़े दर्द में आते हैं। कोई भी कारण है, कोई डॉटर इन लॉ है वो मदर इन लॉ की बातें करना शुरू करती है, मदर इन लॉ है वो किसी डॉटर की बात, वो किसी दूसरे की बात कर रहे होते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम उनको बताना शुरू करते हैं अच्छा ये सीन है आप ऐसा करो, कहते आप मुझे क्यों बता रहे हो।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टीम सेटअप में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आइए मिलकर समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी टीम में पुनीत है और श्री है और पूनम है और अविनाश है और कई लोग हैं, और कई बार जब इनमें मतभेद हो जाते हैं तो मैं इनको कहता हूँ एक काम करो, आपस में बैठ के सुलह कर लो, सलाह मशवरा कर लो। तो एक बार ये लोग सीढ़ियों में खड़े थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो एक इनमें से एक दूसरे को कह रहा है, यार विशाल अजीब आदमी, मैं प्रॉब्लम लेके गया, कहता तुम खुद ही सॉल्व कर लो, अगर मैं खुद सॉल्व कर पाता तो उनके पास क्यों जाता। तो मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने बोला तुम लोग दो कंसल्टिंग एडल्ट्स हो ना भाई, दोनों मिलके आपस में बात कर लो, तुम बोलोगे मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन वो बड़ा नाराज हो गया, वो कहता है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाला वो काम नहीं कर रही, उसको कुछ नहीं बोल रहे, मुझे ही बोले जा रहे हैं, ऊपर से मुझे जाके बोलते हैं अब तुम जाके वो सॉल्व करो।
4: क्योंकि कभी कभी हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। आज हमारे टीम मेंबर में से किसी ने बहुत सुंदर बात की थी कि सोल्यूशन हमें सारे पता होते हैं, सोल्यूशंस हमें सारे पता होते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें उस समय सपोर्ट, वो एक अप्रूवल चाहिए होता है कि जैसे मुझे फील हो रहा होता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और आप भी कहते हो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आई फील रिलीव्ड बट इट ओनली एड्स टू माई पेन।
3: अरे वाह, मेरे साथ वाकई बुरा हुआ।
4: मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरा हर्ट जस्टिफाइड है, मेरा हर्ट होना या मेरा दुखी होना, और ये बहुत कॉमन होता है आपके ऑफिसर्स में भी, किसी ने कुछ कहा फिर आप जाएंगे कैंटीन में या कैफे में, फिर वही बात चलती है, फिर वो आसपास वाले कहते हैं अच्छा ऐसा बोला, तेको ऐसा बोला, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोला, सडनली आई फील अच्छा ठीक है माई हर्ट इज जस्टिफाइड, मुझे बुरा लग रहा है, पर कोई उसमें ये नहीं कहता उन्होंने बोला ना जो बोला, इतना क्यों उस बात को पकड़ना है, फुल स्टॉप लगाओ, तो वो बात नहीं अच्छी लगती। वो कहता है अच्छा मुझे शिक्षा नहीं दो, आप उसको जाकर शिक्षा देकर आओ। दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर हर्ट, आपको रियलाइज करना पड़ेगा मैंने अपने को दुख दिया है, मुझे अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। मैंने ही सोच सोच करके, बोल बोल करके वो हर्ट क्रिएट किया है, मुझे ही करने पड़ेगी। दूसरा आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, आपकी हीलिंग नहीं कर सकता।
3: बहुत बढ़िया, क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या टॉक्सिक पॉजिटिव जैसी भी कोई चीज होती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक और सवाल आया है कि मैं निधि प्रोफेशन से हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। मैं अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बोर्ड स्टूडेंट्स, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड में पॉजिटिव एनर्जी भरती हूँ, लेकिन अपने साथ वैसा नहीं कर पाती। मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव ही होता है, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे अकेले ही अपने लिए लड़ना पड़ता है। कोई सुझाव है क्या?
3: जब भी हम कुछ करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना हमें अच्छा लगता है। हम किसी को हेल्प करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ को करने के बाद फिर उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं डाल देने चाहिए, मैंने ऐसा किया था तो आपको भी करना चाहिए। वो निस्वार्थ नहीं है। बट इफ़ यू आर चूजिंग टू डू समथिंग, देन डोंट मेक इट कंडीशनल। उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करें, मैं आज आपके साथ पार्टी पे गई थी, कल आप मेरे साथ चलो। इफ आई एम चूजिंग टू डू समथिंग, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई बिलीव इन इट। रिलेशनशिप गिव एंड टेक नहीं होता ना, गिव एंड टेक तो बिजनेस होता है। हम बिजनेस थोड़ी ना करें, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना। उसमें भी आप देखेंगे मेरे लिए जो कम्फर्टेबल होता है मैं वो गिव करते हो। किसी के लिए जो कंफर्टेबल होता है वो करता है। पर मुझे क्या होता है, जो मैंने किया ना वही आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छा डिनर बनाया।
2: जब मैं आपके घर जाऊँ आपने मुझे सिर्फ चाय
3: भी नहीं पूछी। आपने तो चाय भी नहीं पूछी, आपने अज्यूम कर लिया चाय तो पीकर ही आए होंगे। तो हम कितना हर्ट हो जाते हैं कि वो मेरे घर आए थे तो मैंने कितनी मेहनत करी। अरे आपने इतनी मेहनत इसलिए करी क्योंकि वो क्वालिटी आपकी है, आपको अच्छा लगा।
2: लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ बात दरअसल सिर्फ सपोर्ट की नहीं है कि चलिए सामने वाले के लिए जो मैं कर रहा हूँ शायद वो मेरे लिए वापस नहीं कर रहे हैं, वो आपने समझा दिया। लेकिन मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है जबकि मैं सबके लिए पॉजिटिव कर रही हूँ, सोच रही हूँ और व्यवहार फैला रही हूँ, तो क्या करें?
3: मेरे साथ अगर सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ सिंसियरली, तो आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। हमारे साथ जो होता है, अगर हम स्पिरिचुअल लॉ देखें, स्पिरिचुअल लॉ के अकॉर्डिंग संकल्प से सृष्टि बनती है। जो लॉ कहता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है, आप जो सोचते हैं आप जो है वैसा होता चला जाता है। अगर आप बहुत नेगेटिव पर्सन है तो आपके साथ बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। अगर हम कहते हैं नहीं हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो एक्चुअली में अगर कोई बहुत पॉजिटिव होता है, समझो कोई बहुत ग्रेटिट्यूड करता है, कोई सबको हेल्प करता है, लॉ के अनुसार उसके साथ जीवन में अच्छा ही होता है। आपको मेजोरिटी लोग कहेंगे अच्छा है, इसके साथ अच्छा ही होता है। समवेयर शी ऑल्सो हैज टू रिफ्लेक्ट कि कहीं ये उनको लगता तो नहीं है। कभी कभी ये भी होता है, हम बाहर अपने एक्शंस में बहुत पॉजिटिव होते हैं
2: लेकिन मन में नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
3: मन में बहुत नेगेटिव होते हैं, और सृष्टि कर्म से नहीं बनते, संकल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सबको मदद करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, पर अंदर में वो बहुत नेगेटिव है
2: कि यार मैं ही करती हूँ,
3: मैं ही करती हूँ,
2: मेरा तो कुछ नहीं होता, ये मेरे बारे में नहीं सोचते। तो बहुत अच्छी बात,
3: तो उनका संकल्प तो नेगेटिव है ना, तो उनके संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वो अगर नेगेटिव होंगे तो उनके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बहुत नेगेटिव है तो कई बार लोग उनसे दूर भी होना शुरू हो जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील होता,
2: तो शायद इसलिए भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। तो निधि, मैं भी आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, कहीं थॉट्स में तो दिक्कत नहीं है, ये सिस्टर शेयर कर रही
3: हैं। पकड़ ले, संकल्प से सृष्टि बनती
2: बस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, अलार्म क्लॉक जो होता है ना, वो तुम्हें सिर्फ उठा सकता है, लेकिन तुम्हारा मूड को उठाने के लिए तुम्हें चाहिए एक शो जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं लेकर आती हूँ हर रोज तुम्हारे लिए शो जो तुम्हारी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा गर्म है। अभी आने वाले हैं ढेर सारे बॉलीवुड के बैंगर्स, गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड ऑफकोर्स अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। फिलहाल अगर तुम ट्रैफिक में फंस गए हो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, घर से वर्क फ्रॉम होम करने का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले हो, जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे अपने साथ चिपकाए रखो और मुझे अपने साथ तुम ऑनलाइन भी रख सकते हो। चेक आउट माय सोशल्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल लगा दे वो मिर्चीदार बैंगर्स जो मैंने अर्लियर प्रॉमिस किए थे तुम्हें, एंड यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello?
4: Hello?
3: कौन?
4: हेलो
3: हाँ बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकड़ू को
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन के
3: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Inefficient.
10: Very complex.
11: Clumsy hoy.
12: Confusion hi confusion.
9: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
16: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
20: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
19: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
21: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
19: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
17: एक ही होता है
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अच्छा बताओ, एक दिन के लिए अगर तुम्हें टाइम मशीन मिल जाए तो तुम कौन से साल में जाना चाहोगे? डीएम करो मुझे अभी के अभी। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। नाउ कमिंग टू आवर टाइम मशीन, हम चलने वाले हैं अब आज का दिन क्यों स्पेशल था हिस्ट्री में पता करने के लिए। सबसे पहले चलते हैं 1553 पर, जब लेडी जेन ग्रे इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, लेकिन सिर्फ 9 दिनों के लिए, मतलब ये तो फ्री ट्रायल से भी छोटा था। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में एस्टैब्लिश हुआ, और 1806 में वेलोर म्यूटनी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे पहले बड़े मिलिट्री अपराइजिंग्स में से एक। बहुत सारे लोग 1857 को याद रखते हैं, लेकिन वेलोर ने रेजिस्टेंस की कहानी उससे बहुत पहले लिखनी शुरू कर दी थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1940, बैटल ऑफ ब्रिटेन ऑफिशियली शुरू हुई, एक हिस्टोरिक एयर कैंपेन दैट चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1948 में लिडा एयरफील्ड कैप्चर हुआ ड्यूरिंग द एक हिस्टोरिक एयर कैंपेन दैट चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। 1948 में लिडा एयरफील्ड कैप्चर हुआ ड्यूरिंग द अरब इजरायली वॉर। 1970

इतनी सारी स्टोरीज, अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। इंस्टा आईडी है मिर्ची प्रिज, व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, और अभी आने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग। एंड चलो फीफा का क्विक अपडेट देती हूँ मैं तुम्हें।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: कल फ्रांस ने मोरक्को से 2-0 से हारकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले हाफ में ड्रामा था, किलियन एम्बापे का पेनल्टी मिस हुआ, लेकिन चैंपियन वही जो कमबैक करे। सेकेंड हाफ में एम्बापे ने 60th मिनट में गोल मारा और सिर्फ 6 मिनट्स के बाद उस्मान डेम्बेले ने स्कोर डबल करके फ्रांस की टिकट सेमीफाइनल के लिए कंफर्म कर दी। और ये सुनो, एम्बापे अब टूर्नामेंट में 8 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में जॉइंट टॉप पर है। लायनल मेसी के एकदम बराबर डेम्बेले भी 5 गोल्स के साथ डेंजरस फॉर्म में है। अब नजरें चिपकी हुई हैं क्वार्टर फाइनल पर, स्पेन वर्सेस बेल्जियम के। विनर सीधा फ्रांस के साथ सेमीफाइनल में टकराएगा। तो अगर तुम लेट नाइट फुटबॉल और अर्ली मॉर्निंग कॉफी दोनों मैनेज कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली एक देसी एक्सपैट लाइफ जी रहे हो। और वीकेंड पर फुल पैसा वसूल होने वाला नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, उसके बाद अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। फुटबॉल फैंस का स्लीप स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, बट क्या फर्क पड़ता है। इसी बात पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अर्ज क्या है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बारिश आने लगी है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है वेदर अपडेट का। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 73 डिग्री फारेनहाइट, स्काइज आर मोस्टली क्लियर, लेकिन फील हो रहा है 74 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। देखो सुबह 9 बजे तक पार्टली क्लाउडी वाइब्स रहने वाली है, तो मॉर्निंग वॉक या कॉफी रन के लिए परफेक्ट टाइम है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद ना थंडरस्टॉर्म्स अपनी एंट्री मारने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ऑफिस से निकलते वक्त अम्ब्रेला को गोश्त करना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं होने वाला है। आज का टेम्परेचर रेंज रहने वाला है 72 से 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, और फील होगा 73 से 86 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वार्म फील होगा, मतलब आज एसी और चाय दोनों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और रेन लवर्स के लिए अपडेट है, पिछले 24 आवर्स में 7 मिलीमीटर्स की बारिश हुई थी और अगले 24 आवर्स में सिर्फ 2 मिलीमीटर्स की बारिश होने वाली है, तो थोड़ी बहुत गुड न्यूज तो तुम्हारे लिए भी है, राइट? वैसे कल का हाई टेम्परेचर था 82 डिग्री फारेनहाइट और आज थोड़ा सा बढ़ाकर 85 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है, तो आज के दिन भी अपना एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस वाला सन प्रोटेक्शन लगाकर ही बाहर जाना, एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्चीदार वाइब्स बनाए रखो ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो, तुम मुझे अपने साथ ऑनलाइन भी रख सकते हो। इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, welcome to Mirchi Mornings ka second hour, jahan par ab hum sunne wale hain Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla.
2: Mirchi Hour ka 3.
1: सबसे पहले चाइना ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है. लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट ने अपना पेलोड डिप्लॉय करने के बाद सिर्फ 6 मिनट्स में कंट्रोल्ड लैंडिंग की यूजिंग अ जायंट मैकेनाइज्ड फिस्ट लाइक रिकवरी सिस्टम. नंबर 2 पर इंस्टाग्राम यूजर्स थोड़ा सा ध्यान दें. मेटा के नए म्यूज इमेज फीचर से पब्लिक इंस्टाग्राम फोटोज का यूज करके AI जनरेटेड इमेजेस बन सकते हैं. फीचर डिफॉल्ट मोड में ऑन है फॉर पब्लिक अकाउंट्स. अगर तुम अपनी फोटोज और AI रीयूज से बचाना चाहते हो तो प्रोफाइल पर जाओ, मेन्यू पर जाओ, शेयरिंग एंड रीयूज में जाकर अलाउ AI टू रीयूज इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड रील्स के ऑप्शन को टर्न ऑफ कर सकते हो. एंड फाइनली क्रिकेट से सौरव गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने कंग्रेचुलेट किया. एंड दादा का जवाब था, थैंक यू चैंपियन, टू बी ऑन द सेम लिस्ट एज यू इज द बिगेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन एवर. एंड सचिन ने भी प्यार से लिखा कि उन्हें इस ऑनर पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ है. वाह भाई, ऐसी दोस्ती सबको मिलनी चाहिए. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला. मिर्ची मॉर्निंग्स पर बने रहो मेरे साथ एंड इंस्टा और एक्स पर जाकर मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है। कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको? 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती हैं बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें जैसा रख लो, बीक में रख लो हमें जैसा।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
2: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
1: बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: ये पटरा।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab... मिर्ची का
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक बॉलीवुड की फील गुड अपडेट बताती हूँ। SRK के शाहरुख खान ने दिल्ली के पंचशील पार्क में वो घर जहाँ शादी के बाद वो और गौरी खान पहली बार साथ रहे थे, अब पूरी तरह अपना बना लिया है। पहले खान फैमिली के पास बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर था और अब बाकी के फ्लोर्स भी एक्वायर करके पूरी बिल्डिंग उनकी हो गई है। और ऑनेस्टली हर देसी एक्सपैट इस फीलिंग को समझ सकता है, चाहे तुम न्यूयॉर्क में हो, न्यूजर्सी में हो या कनेटिकट में हो। दिल में एक घर हमेशा रहता है जहाँ पहली चाय बनी थी, पहली सैलरी सेलिब्रेट हुई थी, या फिर पूरे 6 महीने तक मम्मी की डांट रोज पड़ रही थी, या फिर तुम्हारे डैड ने पहली बार तुम्हें कहा बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे SRK का फॉर्मूला कितना सिंपल है ना, सिर्फ बॉक्स ऑफिस का किंग नहीं बल्कि मैं दिलों का किंग भी बनकर रहूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसा नॉस्टैल्जिक घर है जिसे तुम खरीदना चाहते हो, पूरी तरह अपना बनाना चाहते हो, मुझे बताओ DM करके इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर आज यानी कि 10th of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मिर्ची की तरफ से तुमको एक बहुत बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे, साथ में जप्पी और पप्पी फ्री। और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारे साथ कौन से अमेजिंग सेलेब्स हैं जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सबसे पहले बॉलीवुड से नहीं बल्कि हॉलीवुड से सोफिया वर्गारा, जिनका एक्सेंट ब्लॉकबस्टर है। And one of the most brilliant actors Hollywood has, Chiwetel Ejiofor, जिनका आज happy birthday है। साथ में Adrian Greener, pop princess Jessica Simpson, K-drama lovers के दिल की धड़कन Gong Yoo, and साथ साथ में actor and former hockey player Wyatt Russell. And then we also have birth anniversaries of late actor Angus Cloud and the visionary inventor जिनके ideas ने modern technology की foundation को shape दिया है, Nikola Tesla. तो ऑल माई 10th July बेबीज, ड्रीम बिग, लाफ लाउडर। और केक का एक्स्ट्रा स्लाइस जो है ना आज गिल्ट फ्री खाना, क्योंकि बर्थडे के दिन ना कैलोरीज काउंट नहीं होती है। और तो मुझे एक्चुअल केक नहीं, अपने केक के पिक्चर्स तो भेज ही सकते हो, बर्थडे इनवाइट्स भी वेलकम्ड है। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझसे बात करनी है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Gold lovers and jewelry wishlisters, time now is for a quick gold rate update on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold rating at $4,150. 4,150 के साथ आज गोल्ड की प्राइस कल से अबाउट $100 चीपर ट्रेड कर रहे हैं. राज जोल्स के साथ इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करें. वो खूबसूरत सा तोहफा 22 कैरेट गोल्ड चेन्स, गोल्ड ब्रेसलेट्स, प्लैटिनम चेन्स, प्लैटिनम बैंड्स, प्लैटिनम मेंस कफ फादर्स डे की सेलेक्शन के लिए घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और 9 किश्तों में पैसे दें. आइए फादर्स डे की सेलिब्रेशन में राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: There you go. Your sparkle report for the day is here. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्सपर्ट. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is the last hour of Mirchi Mornings and now we are up to
2: Mirchi Hour Gun 3.
1: US की OneX Technologies ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट नियो के नए रोबोटिक हैंड अनवेल किए हैं. ये हैंड्स इतने प्रिसाइज हैं कि जिप बंद कर सकते हैं, फ्लोर से छोटा सा स्क्रू उठा सकते हैं, लेगो बना सकते हैं और 20 किलो वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं. मतलब घर में अगर रोबोट आ गया तो मम्मी का पहला सवाल होगा, बेटा इससे क्या क्या काम करवा सकते हैं. नंबर टू पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि कंट्रीज को नए ग्लोबल पार्टनरशिप्स बनाने चाहिए और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात की है. एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है लेकिन चाय भारत वाली बनती है. And that's one way to connect with the Desi diaspora. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. Insta or X pe mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Right now it's time for some Mirchi Dar bangers. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga. La viva la Burga. Milci, Burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आंखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: रेडियो मिर्ची। आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
10: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
11: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
12: గులాబీ సాడీ అని లాలి లాలలా దిసతే మే భారీ రాజా ఫోటో మజా కా.
13: టీ సిరీస్ ప్రెజెంట్ ధమాల్ 4.
14: గులాడి బినా చట్నీ కైసే బని.
13: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरी देसी फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं, वो भी सुबह सुबह।
2: मिर्ची राशि जोन
1: इट इज, यानी कि मेष राशि। डेडलाइन को कल देख लेंगे मत बोलना, वीकेंड शुरू होने से पहले सारे काम निपटा लो। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट ऑरेंज, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, डाउट को म्यूट करो, बहुत जल्द कुछ एक्साइटिंग होने वाला तुम्हारी लाइफ में, ट्रस्ट द प्रोसेस। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 29। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सब बोलेंगे हमारी बात मान लो, और तुम कहोगे चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं अपनी ही करने वाला हूँ या वाली हूँ। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 8। कैंसर यानी कर्क राशि, किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो आज जरूर करो, गुड कार्मा कभी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 41। लियो यानी कि सिंह राशि, पार्टनरशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखो, दोनों मिलके जो कर सकते हो वो अकेले मुश्किल होगा। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं, जो कर सकते हो वो अकेले मुश्किल होगा। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मेरा नाम है प्रिसिला. Welcome back to Mirchi Mornings, जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं सितारों के बारे में.
2: Mirchi राशि जोन.
1: लिब्रा यानी तुला राशि. गोल थोड़ा सा माउंटेन जैसा लग रहा है. चिल मारो यार, आज कॉन्फिडेंस तुम्हारा बेस्ट जीपीएस है. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन. लकी नंबर इज 14. That rhymed. Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि, आज काइंडनेस तुम्हारी सुपर पावर होने वाली है. स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है और कंपैशनेट होना और भी बड़ी बात है. लकी कलर फॉर यू इज मरून. लकी नंबर इज 6. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, छोटी छोटी बातों पर ना इतना टाइम वेस्ट नहीं किया करते. टाइम इज मनी और मनी को हमेशा बढ़ाना चाहिए. ये वीकेंड जो आ रहा है ये प्राइसलेस होने वाला है तुम्हारे लिए. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 11. केप्रिकॉन यानी मकर राशि, बॉस या सीनियर तुमको नोटिस कर रहे हैं. एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सोच समझ कर लेकिन कॉन्फिडेंटली यस बोलना. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 27. अग्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज लक से पहले अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करो. पॉजिटिव माइंडसेट ही आज का सीक्रेट वेपन है. लकी कलर इज आक्वा ब्लू. लकी नंबर इज 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि, आज किसी की मदद करने का चांस मिले तो पक्का से करना. काइंडनेस का रिटर्न गिफ्ट कभी भी मिल सकता है. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 33. And that's it for Rashi Zone Part 2 with me Priscilla. This is Mirchi Mornings. Connect with me. Insta or X par mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp karna chaho to 9033 Mirchi is my WhatsApp number. 9033647244. Stay tuned and stay hot. Okay.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener MA, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार, मिर्ची मॉर्निंग्स का शिफ्ट यहाँ पर खत्म होता है। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बॉलीवुड से एक क्विक अपडेट देकर जाती हूँ। एक्टर राजपाल यादव से जुड़ी एक लीगल डेवलपमेंट सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केसेस में उनकी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया है। कोर्ट ने उनके सातों केसेस में हर एक में 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट रखी है, जो कंकरेंटली यानी कि साथ साथ में चलने वाली है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए दिए गए जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हुए, तो इस बात पर उनकी सजा जो है वो अपहोल्ड की गई है। और इस बात से सिंपल सा हमें एक लेसन मिलता है कि कमिटमेंट्स सिर्फ कैलेंडर्स में नहीं, एक्शंस में भी दिखाई देने चाहिए। बाकी लीगल मैटर्स, प्रोसेसेस और प्रोमिसेस जो है उनको टाइम पर पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना लाइफ में ट्रेजेडी आ जाएगी, चाहे आप कितने भी बड़े कॉमेडियन क्यों ना हो। वैसे राजपाल यादव को बॉलीवुड से काफी लोगों से हेल्प भी मिला है। अब आगे हम देखेंगे कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड इसी बात पर मेरे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ मिर्ची मॉर्निंग्स पर थी, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तुम फिलहाल अपनी वीकेंड की तैयारी करो, लाइफ को एंजॉय करो और अपना विल पावर अपनी कॉफी की तरह स्ट्रांग रखो। वैसे थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विथ मी, तुम्हारे साथ और मिर्चीदार हो जाती है। और अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड। मुझसे कनेक्ट करना है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आज उनका बर्थडे है जिन्हें दुनिया संस्कारी बाबूजी के नाम से जानती है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। और आज आलोक नाथ जी का बर्थडे है भाई, जिन्होंने भाग्यश्री, अमृता राव, सलमान खान, मोनीश बहल, इन सब को पाल पोस कर बड़ा किया है फिल्मों में। हालांकि रियल लाइफ में ये खुद मोनीश बहल और सलमान खान से ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 6-7 साल का ही फर्क है इन लोगों की उम्र में। लेकिन क्या है ना कि हम सब किसी ना किसी रीजन से पैदा हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आलोक नाथ जी का रीजन इज टू प्ले बाबूजी इन द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन क्या आपको पता है आलोक नाथ जी के कोई दोस्त नहीं है? वेल, वो इसीलिए क्योंकि वो दोस्ती को रिश्तेदारी में जो कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट किडिंग एंड विशिंग आलोक जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जिन्होंने हम 90s किड्स के दिमाग में ये सेट कर दिया कि बाबूजी हो तो ऐसे। और इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए मैं आपसे कहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Oh no!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप 90s kid हो ना तो इस गाने को तो पहचानते होगे।
2: Boy, boy, bumbo ka bumbo.
1: गाना भी कह रहा है पहचान कौन?
0: Mirchi, VCR.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा है 90s की सुपरहिट मूवी लाडला, जो की स्टोरी है एक फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री की मालकिन के बीच हुई एक ऐसी शादी की जो मालकिन ने अपनी फैक्ट्री के यूनियन लीडर को सबक सिखाने के लिए की। आज के टाइम पर ऐसी स्टोरी पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज आज हम मूवीज में रियलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन 90s में मूवीज वर ऑल फिक्शन एंड इमेजिनेटिव। इसी शादी के चलते कैसे घर और फैक्ट्री में ये मालकिन और फैक्ट्री के यूनियन लीडर की नोकझोंक चलती है, ये बड़ा मजेदार है। एंड दिस मूवी वॉज फर्स्ट मेड इन तमिल एंड देन इसका हिंदी वर्जन डायरेक्टर राज कंवर ने बनाया, और तमिल वर्जन भी श्रीदेवी को पहले ऑफर हुआ था लेकिन श्रीदेवी ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। बट तमिल में ये फिल्म सुपर हिट हुई एंड देन आई गेस श्रीदेवी रिपेंटेड नॉट डूइंग दिस फिल्म। लेकिन जब इस मूवी को हिंदी में बनाना डिसाइड हुआ तो श्रीदेवी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस। वो इस फिल्म की चॉइस तब बनी जब मूवी की शूट 80% कम्प्लीट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस फिल्म को दोबारा क्यों शूट किया गया, इसके पीछे एक कहानी है, बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo mazaka.
7: T-Series present The Mall 4.
8: Gulabi bina chatni kaise bani.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी लाडला श्रीदेवी के इस फिल्म में काम करने से पहले ही 80% कंप्लीट हो चुकी थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एक्चुअली इस फिल्म में दिव्या भारती वाज डूइंग द फीमेल लीड ऑपोजिट अनिल कपूर, और उन्होंने मूवी की शूट 80% कंप्लीट भी कर ली थी, लेकिन फिर वी लॉस्ट हर टू अ टेरिबल एक्सीडेंट और फिल्म की शूट अभी बाकी ही थी, जिसके लिए राज कंवर को दिव्या भारती वाले सारे सीन्स दोबारा शूट करने पड़े। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दिव्या की याद में कुछ लॉन्ग शॉट्स को फिल्म में यूज भी किया गया है। एंड व्हेन ये डिसाइड हुआ कि नाउ दे नीड अनदर एक्ट्रेस टू डू द लीड रोल, तो काफी सारे नामों को खंगालने के बाद श्रीदेवी का नाम आया। एंड सिंस श्रीदेवी वॉज वेल अवेयर कि इस फिल्म का तमिल वर्जन वॉज अ हिट, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने में देर नहीं लगाई। एंड दिस इज हाउ द फिल्म गॉट कम्प्लीटेड। आई समहाउ फील कि अगर दिव्या भारती की लाइफ पर कोई फिल्म बनाए ना, तो वो भी कितनी हिट होगी यार, क्योंकि दिव्या भारती इज एन एक्टर अचीव्ड सो मच एट सच अ यंग एज एंड देन डाइड टू एट अ वेरी यंग एज। क्या आपने भी 90s में दिव्या भारती का पोस्टर अपने रूम में लगाया था? मेरे नहीं, बट हाँ मेरी कजिन के रूम में डेफिनेटली था। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
2: Ghana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai to set the pop clock of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaane hain. Usme ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka iconic indie pop gaana hone wala hai. A special spotlight, all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ki with Ghana number 10. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है. शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है. साडी सुन बाय हर्ष नुसी. हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स उन्हीं की कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव. गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है. साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी जो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक only on Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
5: Number 10. Hao chup kar lang jaave kol di tu sang jaave ko takkani ch tere rang vich rang jaave.

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKanika. Follow karna bilkul free hai. @RJKanika par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जम करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
4: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
5: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, Oak Tree Road, Isalin.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Isalin.
8: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो मजा का.
9: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4.
10: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी.
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: अब मिर्ची का
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक. एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील. एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग. बिकॉज एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी. कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग हैज शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव. दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

डूड दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना, काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर अ इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated, and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
10: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

ओजी माय कुमार सानू कॉल्ड तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्काई और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज

The OG pop star song, गाने का नाम है मोहब्बत लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बत लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं, दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से, जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बत लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बत लुटाऊंगा ऑन आग कसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आर द लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 3।

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
3: कायर जो थे वो शायर बने।
2: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
4: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना।
2: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 2।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक जब 4 साल के थे तो उनके मामा गोविंदा उनको कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेके गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये स्टोरी उन्होंने काफी टीवी शोज में शेयर भी की है और सीन कुछ यूँ था कि गोविंदा ने अपनी सिस्टर के लिए मन्नत मांगी थी और जब वो मन्नत पूरी हो गई और वो मन्नत जब 4 साल की हो गई यानी कि कृष्णा अभिषेक, तो वो उनको अपने कंधे पे बिठा के वैष्णो देवी लेकर गए और वहां से जब वो वापस आए तो उनके पैर सूज गए थे, पैरों में दर्द बहुत था। इस वजह से गाने की शूटिंग होनी थी, राकेश रोशन साहब की फिल्म का वो गाना था, वो एक दिन आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो भी गोविंदा के पैर में काफी दर्द और सूजन वगैरह थी, पर उन्होंने क्या डांस किया, वही गाना सुनते हैं यहाँ पर। राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ, इंदवर साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद अजीज साधना सरगम की आवाज, फिल्म का नाम खुद गर्ज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: Pudani Jeans with Charu, only on

1985 की फिल्म साहब में मेन हीरो यानी कि अनिल कपूर को एक फुटबॉल प्लेयर दिखाया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सोचिए 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट इतना पॉपुलर था तब, और तब किसी फिल्म में हीरो को फुटबॉल प्लेयर दिखाया जाए। वेल, इसकी एक वजह ये भी है कि एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी और बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न साइड फुटबॉल गेम कितनी पॉपुलर है ये हम सब जानते हैं। खैर, कई बार सोच के बुरा भी लगता है कि ये गेम इतनी पॉपुलर है, इस गेम से जुड़ा इतना टैलेंट है हमारे देश में, तो भी इंडियन फुटबॉल को बढ़ावा देने की, उसे सपोर्ट करने की किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म, इस फिल्म में ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बहुत सारी पब्लिक को पहली बार पता चला था। और इस फिल्म की एक और हाईलाइट, इसका ये गाना, बप्पी लहरी का कॉम्पोजिशन, अनजान साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहरी एस जानकी की आवाज। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

1989 की फिल्म परिंदा के गाने लिखने के लिए पहले गुलजार साहब फिर निदा फाजली साहब को अप्रोच किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ये बात इस फिल्म के लिरिसिस्ट खुर्शीद हिलौरी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, लेकिन उन दोनों शायरों ने इसके गाने लिखने से मना कर दिया या कोई बात नहीं बन पाई। तब कुछ यूं हुआ कि फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के डायलॉग राइटर इम्तियाज हुसैन साहब के यहाँ लंच पे गए, और जब लंच वगैरह रेडी हो रहा था तब उनके घर में एक ऑडियो कैसेट चल रही थी जिसमें कुछ गजलें चल रही थी। तब चोपड़ा साहब ने हुसैन साहब से पूछा कि भाई ये किसकी गजलें हैं, किसने लिखी? तो उन्होंने बताया कि खुर्शीद हिलौरी नाम के एक पोएट हैं, उनकी है। तब हिलौरी साहब को अप्रोच किया गया और तब उन्होंने परिंदा के ये आइकॉनिक गाने लिखे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose, weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: गुलाबी साड़ी अनि लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
6: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
7: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

आज की ताजा खबर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और 1973 की एक कॉमेडी फिल्म है मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए। आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी प्लीज देखिए। डायरेक्टेड बाय राजेंद्र भाटिया एंड सो वेरी वेल रिटन बाय मूल राज राजदा। ये फिल्म में गुजराती प्ले चकदोल से अडेप्टेड है। इसमें किरण कुमार, असरानी जी की वाइफ मंजू बंसल, राधा सलूजा, IAS जौहर, ये एक्टर्स हैं। बहुत सारे एक्टर्स और हैं, लेकिन तो भी मेन लीड में मैं कहूंगी कोई एक्टर नहीं, एक फिल्म का किरदार है। इस किरदार का नाम है चंपक भूमिया। अच्छा, इस फिल्म के लिए ना असरानी साहब को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे उनका काम तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन IAS जौहर साहब ने जो कॉमेडी की है ना यार, इट इज टू गुड। ही ऑल्सो डिजर्व्ड एन अवार्ड फॉर दैट। एनीवे, जब मौका मिले ये फिल्म जरूर देखिएगा। ए बाय द वे, इसके बाद में रीमेक भी बने थे। एक तो मराठी फिल्म थी फेंका फेंकी, एंड देन 2008 की गोलमाल रिटर्न्स, उसका जो प्लॉट था वो भी इसी से इंस्पायर्ड था। फिलहाल के लिए वी टेक अ ब्रेक, इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: जंजीर फिल्म को हम एक डेकेड डिफाइनिंग फिल्म बोल सकते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में इस फिल्म के बारे में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली इस कहानी का तो मैं क्रेडिट सलीम साहब को देना चाहूंगा। बेसिक लाइन है और जो कैरेक्टर है एंग्री यंग मैन का। अब जो हमने मनाई किस वक्त कि जब आरडी बर्मन पीक पे था, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पीक पे थे, सुपरहिट म्यूजिक चल रही थी, राजेश खन्ना द रोमांटिक सिंगिंग स्टार, उस वक्त हमने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस ही नहीं करता, जिसमें हीरो की कोई कॉमेडी नहीं है। अब ये मार्केट के खिलाफ बात। अब ये एक टॉल सीरियस फेस का इंटेंस लड़का, यार ये तो अलग ही है, एक तो लंबा बहुत है यार, तो इतने लंबे हीरो नहीं होते थे।
0: वेल, इनके हिसाब से इस फिल्म के लिए किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो भी इन्होंने शेयर किया था। थोड़ी देर के बाद सुनते हैं। राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
7: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
8: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: Pudani jeans with Charu only.

0: जंजीर फिल्म की सफलता का क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में फिल्म के वन ऑफ द राइटर्स जावेद अख्तर साहब ने एक टीवी शो में सुनिए क्या शेयर किया था।
1: एक बात बताऊँ इस बारे में, हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा में हम लोग की तो बहुत तारीफ होती रहती है, लेकिन एक इंसान जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं होता, उसका नाम है प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने ये कहानी ली।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: आ जाओ आगरा वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहां से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट।
2: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स .com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची।

खयाम साहब का कंपोज किया हुआ गाना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और आपको पता है खयाम साहब ने अपने उसूलों अपने प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत सा काम खोया है, मतलब उनके हाथ से वो काम निकल गया है, वो अपॉर्चुनिटीज चली गई। क्या होता था, काफी फिल्मों में उनको ऐसा कहा जाता था कि कोई प्री एग्जिस्टिंग ट्यून है, कोई वेस्टर्न ट्यून है, उससे आप सैंपल कर लीजिए या उसको कॉपी कर लीजिए और हमारी फिल्म के लिए इस तरह का गाना बना दीजिए। इस बात से खयाम साहब ओके नहीं होते थे। उनका कहना था कि ऑलरेडी अगर ट्यून एग्जिस्ट कर रही है तो मैं क्या बनाऊंगा, मेरी कॉम्पोजिशन कहाँ से हुई। ऐसे थे उनके उसूल, ऐसे थे उनके एथिक्स। चलिए इसी बात पे खयाम साहब का एक और गाना सुनते हैं, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। दर्द फिल्म का ये गाना है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Listener MI, back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

द वेरी अडोरेबल राकेश बेदी साहब. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. बहुत सारे लोगों के लिए वो स्पेशल हैं, राइट फ्रॉम द 80s, जब वो चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए और पता नहीं कितनी सारी फिल्मों में आए थे, और उससे ज्यादा टेलीविजन शोज में ज्यादा पॉपुलर हुए थे. यू नो शोज लाइक ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, फिल्मी चक्कर, ये दुनिया गजब की, जबान संभाल के, उसके बाद फिर यस बॉस, एंड देन ऑफ कोर्स भाभी जी घर पे है हमें, अंगूरी भाभी के डैडू भूरे लाल के रोल में. वैसे आपको पता है राकेश बेदी साहब ने FTII पुणे से जब अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी 1973 की अनामिका, संजीव कुमार जया बच्चन वाली जो फिल्म थी. लेकिन फिर उस फिल्म से उनको रिप्लेस कर दिया गया था. फिर उनकी शुरुआत आई थिंक 1979 में हुई थी विद द फिल्म कॉल्ड हमारे तुम्हारे, जिसमें वो सपोर्टिंग कास्ट में थे. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

वाह वाह वाह वाह वाह, कुछ लाइंस पढ़ रही थी मैं, आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो पोएट का नाम है संतोष खेरवरकर और ये लिखते हैं, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, शनासाई मतलब जान पहचान, कितनी गहरी ये शनासाई लगे, झूठ वो बोले तो सच्चाई लगे, इतना पागल हूँ मैं उनके इश्क में, भीड़ में भी मुझको तन्हाई लगे, तुम नहीं हो साथ जब मेरे सनम, शूल जैसी मुझको ये पुरवाई लगे, बागबां तेरी बदौलत ही यहाँ, हर कली गुलशन की मुरझाई लगे, चाहता हूँ इस कदर तुझको कि अब हर बुराई तेरी अच्छाई लगे। आय हाय, चलिए इसी बात पे अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
4: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काय.
5: टी सीरीज प्रेझेंट धमाल 4.
6: गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी.
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार. रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई. अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Purani Jeans with Charu.

1983 की सुपरहिट फिल्म हीरो जैकी श्रॉफ साहब की डेब्यू फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली एज अ हीरो एज अ मेन लीड डेब्यू फिल्म थी, उससे पहले वो देवानंद साहब की स्वामी दादा फिल्म में एक छोटू मोटू सा रोल कर चुके थे। अच्छा, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई इस फिल्म के लिए पहले संजय दत्त को कास्ट कर चुके थे, लेकिन संजय दत्त तब अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज से डील कर रहे थे, तो कुमार गौरव साहब के पास गए सुभाष घई। लेकिन उनके फादर राजेंद्र कुमार ने इतनी ज्यादा बड़ी प्राइस कोट की कि सुभाष घई ने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं किसी स्टार सन के साथ की फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं किसी न्यू कमर को साइन कर लूंगा। एंड देन जैकी श्रॉफ साहब केम इन द पिक्चर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जद एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
15: Purani jeans. With Charu. Only on

अमर अकबर एंथनी फिल्म में अकबर की मोहब्बत का नंबर वन दुश्मन था उसका ससुर तैयब अली यानी कि मुकरी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं ना कुछ दिन पहले कोई बहुत ही पुरानी पिक्चर देख रही थी, कोई लेट 40s टाइप की पिक्चर, उसमें भी मुकरी साहब थे। तो मैं सोच रही थी कितने पुराने, मतलब कितने पहले से फिल्मों में काम कर रहे थे। एंड देन व्हेन आई रेड अबाउट हिम आई गॉट टू नो कि मिड 40s में उनका करियर शुरू हुआ था और 50 साल के करियर में उन्होंने कुछ 600 फिल्मों में काम किया। और जब भी वो स्क्रीन पे आते थे ना, मजा सा आ जाता था, ऐसा लगता था कुछ तो मजेदार होने वाला है भाई। और उनका एक और यादगार किरदार शराबी का नथू लाल, मूछें हो तो नथू लाल जैसी हो वरना ना हो। हैट्स ऑफ टू दिस अमेजिंग कॉमेडियन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए, इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आखो है, एक मारूंगा।
2: ने बदतमीजी क्या करी थी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
2: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
13: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज़ जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज़ जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ। और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टेड आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बाजे।
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्ट

0: अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Listener mein back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहे हो
3: कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: कहाँ करा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स
7: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स
8: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
10: गुलाबी साड़ी अने लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का
11: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
17: Tera kya hoga, Kalya?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

0: लाइफ में कोई भी चीज पहली बार करो ना तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती ही है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वो पहली फ्लाइट हो, पहला जॉब इंटरव्यू हो, पहली कार खरीदना हो या फिर पहली बार अपने लिए घर खरीदना हो, यार इतने सारे टर्म्स, पेपर वर्क, ऑप्शंस और डिसीजंस होते हैं ना कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। लेकिन जब सही गाइडेंस मिल जाए ना तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आसान लगने लगती है। और इसीलिए आज हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए लाए हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स बाय नन अदर देन मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो, शुक्रवार है भाई और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज, गिविंग यू द फाइनल मॉर्गेज अपडेट फॉर द वीक। हार्ड एंड यू मेड आउट देयर एंड टुडे द यूएस मार्केट्स बेयरली बस्ट। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आई वुड लाइक टू शेयर ग्रेट न्यूज। कंफर्मिंग लोन लिमिट्स आर राइजिंग एंड देयर इज अ मेजर इंक्रीज इन देयर। सो द कंफर्मिंग लोन लिमिट इज राइट नाउ $832,000 एंड the high balance loan limits are $1.1 million. I can vouch now that we are lending very aggressively. Whether you're a first time home buyer or you're on H1B visa, there's a mortgage program for every individual who wants to fulfill their American dream. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it's lionmtg.com. Also, remember, listeners, refinance are still very, very active. And well, at the same time, home values are also on the rise, creating incredible opportunities to cash out or consolidate debt by paying off high interest rate credit card debts, student loans, private loans. Also, we have got aggressive rates on investment properties. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
10: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची का।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 5:30 p.m. Mid-Jeet Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shandar. Let's do not
1: donkey have a funky time. संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफर जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज यानी सॉफ्ट सूदिंग जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली goes down the ground. कोहली goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टा मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बनके तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार अब बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा, तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
1: कितने का है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं, 7,000 रुपए सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें जैसे रख लो, ये बीच में रख लो हमें जैसे।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना सुनील जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ सुनील जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: आपने
2: बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं। मेरी बात सुनिए संदीप।
1: बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: ये पकड़ा।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
11: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: expires 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाले किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Monkey Time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहेबान मेहरबान कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विद अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La Virpa, la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या लगी?
3: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo maza kar.
9: T-Series present The Mall 4.
10: Gulabi bina chatni kaise bani?
9: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: No!
14: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मजेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए यह अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन। सर्चिंग द बेस्ट टाइम इन

0: Jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Tera kya hoga, Kalia?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
2: Ab, mirchi kha.
4: Radio Mirchi, it's hot.
5: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
7: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कने दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन Mirchi, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु।
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.

की टाइम। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।